FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से बोल रहे हैं। समय आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 2 तारीख बामुताबिक 23 मई 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 7:56 और 20 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश

0: विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस

0: जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा।

0: हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates select from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways, home affairs, health and family welfare, and department of higher education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26. Marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation.

0: order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वाम मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरारशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरारनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरारनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरारी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमूई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में, जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं, 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली

0: जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफ़ीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क़याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफ़र करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज़, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को, जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क़याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावक़ार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें ये अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में ख़वातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फ़ौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फ़ौजी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जुनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कोंगो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अल-अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटों की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज़ में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है।

0: इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की ख़रीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मज़ीद कहा कि ज़िम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज़्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज़ किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBI ने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 ज़िलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज़्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्जा हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिस हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर ग्लाइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने

0: आदाब सामीन, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुबह खैर, और मैं हूं आपका मेजबान राजा रहबर जमाल। सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे अहम दस्तावेज के बारे में बात करेंगे जो आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है राशन कार्ड। जी हाँ, राशन कार्ड न सिर्फ हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा उठाने का जरिया है, बल्कि ये एक अहम शनाख्ती और रिहायशी दस्तावेज भी माना जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे राशन कार्ड क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कौन लोग इसके अहल हैं, नया राशन कार्ड कैसे बनता है, किन दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है, और प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ खसूसी गुफ्तगू करेंगे तहसील सप्लाई ऑफिसर भद्रवा मियाँ महमूद साहब, जो सामीन को इस हवाले से मुकम्मल जानकारी फराहम करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राशन कार्ड क्या है। सामीन, राशन कार्ड हुकूमत की जानिब से जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है, जिसके जरिए मुस्तहिक खानदानों को सरकारी नरखों पर गजाई इजनास फराहम की जाती है। इसके जरिए चावल, आटा, चीनी और दीगर जरूरी अशिया अवाम तक कम कीमत पर पहुंचाई जाती है, ताकि माशी तौर पर कमजोर तबका को सहूलियत मिल सके। आजकल राशन कार्ड को कई सरकारी स्कीमों और तस्दीकी अमल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सामिन, राशन कार्ड की अहमियत की बात करें तो राशन कार्ड की अहमियत कई एतबार से बहुत ज्यादा है। ये गरीब और मतवस तबका को सस्ती गजाई अशिया फराहम करता है। ये एक अहम शनाख्ती और रिहायशी सबूत के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे सब्सिडी, फलाही इमदाद और दीगर सहूलात के हसूल में मददगार साबित होता है। कुदरती आफात या हंगामी हालात में हुकूमत की इमदादी स्कीमों से फायदा उठाने में भी राशन कार्ड अहम किरदार अदा करता है। डिजिटल इंडिया और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब लोग मुल्क के किसी भी हिस्से से अपना राशन हासिल कर सकते हैं। ये निज़ाम एक तरह से अवाम के लिए गजाई तहफुज की ढाल है, जैसे सर्दियों में कांगड़ी खामोशी से हरारत देती रहती है। अब राशन कार्ड के लिए अहलियत की बात करें तो सामीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि राशन कार्ड कौन बनवा सकता है। आमतौर पर रियासत या जिला का मुस्तकिल रिहायशी होना जरूरी होता है। खानदान का नाम पहले से किसी दूसरे राशन कार्ड में शामिल ना हो। खानदान की माशी हालत और सरकारी मयार के मुताबिक अहलियत देखी जाती है। नए शादीशुदा जोड़े, अलहदा खानदान या नए रिहायशी भी दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं। हुकूमत मुख्तलिफ जमरों के तहत राशन कार्ड जारी करती है, जैसे तरजीही घरेलू राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, नॉन प्रायोरिटी जमरा। अहलियत का तयन महकमा खुराक व रसद के कवायद के मुताबिक किया जाता है। राशन कार्ड बनवाने का तरीकेकार क्या है? अब बात करते हैं राशन कार्ड बनाने के तरीकेकार की। सबसे पहले दरख्वास्त फार्म हासिल किया जाता है, जो दफ्तर या ऑनलाइन पोर्टल से दस्तयाब होता है। फार्म में खानदान के तमाम अफराद की तफसीलात दर्ज की जाती हैं। मतलूबा दस्तावेजात फार्म के साथ मुंसलिक किए जाते हैं। दरख्वास्त महकमा खुराक, रसद व अमूर सार्फीन के दफ्तर में जमा करवाई जाती है। मुतलका अफसरान की जानिब से जांच और तस्दीक की जाती है। तमाम मालूमात दुरुस्त पाए जाने पर राशन कार्ड जारी किया जाता है। अब कई इलाकों में ये अमल ऑनलाइन भी दस्तयाब है, जिससे अवाम को काफी सहूलत हासिल हो रही है। अब इसके बारे में जरूरी दस्तावेजात की बात करें तो सामीन, राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, रिहायशी सबूत, शनाख्ती सबूत, पासपोर्ट साइज तस्वीर, मोबाइल नंबर, बिजली या पानी का बिल, बैंक अकाउंट की तफसीलात, पुराने राशन कार्ड की नकल अगर मौजूद हो। कुछ मालूमात में इजाफी दस्तावेजात भी तलब की जा सकती हैं। सामीन, अब वक्त है हमारे खसूसी इंटरव्यू का। हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सप्लाई ऑफिसर भद्रवा मियाँ महमूद साहब, जो राशन कार्ड से मुतल्लिक अवाम के सवालात के जवाब देंगे। जी टीएसओ साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जो आज राशन कार्ड पर रखा गया है।
1: शुक्रिया राजा राबर जी।
0: केशव साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, आवाम के लिए राशन कार्ड की सबसे बड़ी अहमियत क्या है?
1: राशन कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड से आप राशन हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीमों का फायदा ले सकते हैं। राशन कार्ड तकरीबन हर जगह पे इस वक्त एज अ डॉक्यूमेंट वो मांगा जाता है। तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि हर एक बंदे के पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, उसको बनवाना चाहिए। जी,
0: तो नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है?
1: नया राशन कार्ड तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। ये अभी 2011 सेंसस में जो हमारी सेंसस हुई थी उसके मुताबिक राशन कार्ड बने थे, लेकिन उसके बाद कुछ लेफ्ट आउट फैमिलीज जो उस सेंसस में एनरोल नहीं थी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि उनको भी आप राशन कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो। इस वक्त अगर कोई बाइफरकेट राशन कार्ड करवाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट डायरेक्शंस, वो अभी बंद है। तो राशन कार्ड जो अभी इस वक्त अपडेशन प्रोसेस भी है, रीवेरिफिकेशन भी राशन कार्ड्स की हो रही है, तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि अपने अपने राशन कार्ड को रीवेरीफाई, अपडेट करवाइए, रीवेरीफाई करवाइए।
0: टेस्ट सब
1: जी,
0: ऑनलाइन और ऑफलाइन अमल में क्या फर्क है?
1: इस वक्त हमारी जो राशन कार्ड का पोर्टल है सारा ऑनलाइन सिस्टम पे ही चल रहा है। ऑफलाइन सिस्टम इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं कि हाथ से किसी का राशन कार्ड हम बना के दें, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहे वही लगते हैं। तो अगर कोई बंदा ये चाहिए, कोई ये चाहता है कि खुद से करे, और वह गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी भी दी है कि स्मार्ट, हमारी JK स्मार्ट APDS पोर्टल 2.0 पे वो सिटीजन लॉग इन से भी लॉग इन करके उसमें एडिशन, डिलीशन, एक्शन, बच्चे जो उनका 6 साल से ऊपर है उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी वो ऑफिस में हमें दे के, अब वो वेरीफाई हम करके उसको राशन कार्ड हम डाउनलोड करके दे देते हैं।
0: महमूद साहब, इसमें एक बात आती है कि जब ऑनलाइन बंदा अप्लाई करता है, जो भी इसका सारिफ होगा वो जब अप्लाई करता है तो वो ऑनलाइन
1: जी
0: आपके पास आती है और उसके बाद प्रोसीजर आप खुद ही आपके एंड से स्टार्ट होता है।
1: जी जी जी जी जी जी वो प्रोसीजर हमारे एंड से, उसके बाद रिक्वेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पे हमें शो करती है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसको अप्रूव करते हैं, या जो भी होगा अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसको हम रिवर्ट कर देते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करे। जब उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद उनको राशन कार्ड दिया जाता है।
0: कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है ये तमाम तर चीजें जो है डिजिटल इंडिया का जो नारा लगा है उसके लिए किया जा रहा है। महमूद साहब, किन अफराद को तरजीही जमरे में शामिल किया जाता है?
1: देखिए, हमारे पास जो राशन कार्ड की

0: चार हैं, एक है AAY अंत्योदय अन्न योजना, PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, NPHH नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड और एक्सक्लूजन। अब AAY में वो बंदे हैं जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट, जो सबसे हमारा जो वीकर सेक्शन है, जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, या इनकी मिनिमम मिनिमल इनकम उनकी जनरेट होती है सालाना, या कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई डिवोर्सी है, विडो है, जिनके घर में दूसरा कोई बंदा काम करने वाला ना हो, जिनके पास कोई भी लक्जरियस आइटम फैसिलिटी वो इस्तेमाल ना करते हों, तो उनके लिए यानी कि पुअर ऑफ द पुअरेस्ट के लिए अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड AAY कार्ड दिया जाता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा ऊपर वाला तबका आता है, जो उससे थोड़ा सौंड तबका आता है, उनके लिए प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि PHH कार्ड दिया जाता है। जो उससे ऊपर आते हैं यानी कि जिनकी इनकम सालाना 1.25 लाख से ज्यादा हो, तो उनको APL कैटेगरी में रखा जाता है। और जो हजरात जिनकी इनकम सालाना 5 लाख से ज्यादा होती है, तो उनको एक्सक्लूजन कार्ड दिया जाता है। लेकिन यानी कार्ड तो उनको मिलता है, लेकिन उनको जो राशन नहीं मिलता है। बाकी सारे कैटेगरीज में AAY PHH NPHH में राशन मिलता है, और इसकी एक स्केल दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से।
1: तो स्केल क्या है टीएसओ साहब इसमें, कि जो
0: हमारे
1: अंत्योदय है,
0: जी
1: एपीएल है,
0: जी जी
1: बीपीएल
0: जी
1: है?
0: रहबर जी, हाँ, जैसे हमारा AAY राशन कार्ड होल्डर जो है, उसको जो जर्नल स्केल है वो है राइस 20 kg और वीट 15 kg, और इनके लिए एक एडिशनल जो स्केल आती है वो 4 सोल को 5 kg एक्स्ट्रा राइस मिलता है, 5 सोल वाले राशन कार्ड को 15 kg, 6 सोल वाले को 25 kg, ऐसे ही 10 10 kg ऊपर, ये 7 सोल वाले को 35 kg, 8 सोल 45 एंड सो ऑन। तो ये एडिशनल इनके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद हमारा PHS कैटेगरी में जो राशन कार्ड जो भी सार्फिन फाल करता है, कंज्यूमर फाल करता है, उनको जो राइस और वीट 3 kg पर सोल, वीट 2 kg पर सोल मिलता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एडिशनल जो इनको मिलता है, 1 सोल जिसका राशन कार्ड पे सिंगल पर्सन है, 1 सोल वाला राशन कार्ड, उनको 5 kg एडिशनल राइस मिलता है एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg, 2 सोल को 10 kg, 3 सोल को भी 10 kg, 4 सोल वाले राशन कार्ड को भी 10 kg, 5 सोल वाले को भी 10 kg और 6 सोल वाले को 5 kg। अब वो 6 सोल इनमें कोई भी इनको एक्स्ट्रा राशन नहीं मिलता है, जिनके राशन कार्ड पे 6 से ज्यादा बंदे हों, उनको एडिशनल वाला जो राइस है वो नहीं मिलता, जो एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg होता है। उसके बाद हमारा नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड NPHH के जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको राइस 3 kg पर सोल, वीट 2 kg पर सोल एट द रेट ऑफ रुपीज, राइस जो मिलता है 15 kg रुपीज, वीट 12 kg और आटा जो मिलता है 13 kg, और इनको कोई भी एडिशनल स्केल नहीं आती है। और जो हमारा एक्सक्लूड है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि उनको कार्ड तो होता है डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए, लेकिन उनको सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलता, यानी कि उनको राशन का जो है वो नहीं दिया जाता है।
1: बिल्कुल, ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है लोगों तक जो ये पहुंच रही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ तहसील सप्लाई ऑफिसर बदरवा हैं, मियाँ महमूद साहब, जो जानकारी फराहम कर रहे हैं सार्फीन को कि उसको उनको किस तरीके से जो है अपना राशन जो है वो मिल सकता है, और खासकर राशन कार्ड कितना अहम डॉक्यूमेंट जो है। तो साहब, अगर किसी राशन कार्ड में गलती हो तो उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है?
0: अगर करेक्शन की बात है, जैसे नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पॉस मशीन है डीलर्स के पास होती है, उस पे ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से वो नाम अपना करेक्ट करवा सकते हैं।
1: यानी वो जब राशन लेने जाएं तो वहीं वो अपना वो दुरुस्त करवा सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको कहीं इधर
0: बिल्कुल
1: उधर जाने
0: करवा,
1: की जरूरत नहीं है, अपने जो
0: जरूरत
1: जरूरत
0: नहीं
1: होगी।
0: है।
1: वन नेशन वन राशन कार्ड इस स्कीम से आवाम को क्या फायदा पहुंच रहा है, अगर आपके नजरिए से देखा जाए?
0: ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे पहले बाहर वाला बंदा यहाँ पे कोई काम करने आता था, या यहाँ का बंदा कहीं बाहर काम करने जाता था, तो उनको राशन नहीं मिलता था, क्योंकि राशन कार्ड में वन नेशन वन राशन कार्ड की फैसिलिटी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। इस वक्त बाहर का बंदा भी यहाँ से राशन ले सकता है, ये बहुत अच्छी स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड की।
1: इस वक्त सेंसिस भी चल रहा है जैसा आपने।

0: कहा कि 2011 सेंसिस के बाद से जो है वो राशन कार्ड की जो जो भी बनते हैं वो उन्हीं उसी हिसाब से बने थे। तो अभी राशन कार्ड जो सेंसिस हो रही है 2027 की, जिसके लिए सेल्फ इनमरेशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, सरकार
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कितना
1: बिल्कुल,
0: जरूरी समझते हैं इसे भी आप?
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हर एक बंदे को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी सेंसिस करवानी चाहिए और सेल्फ एनुमरेशन खुद से भी करें। जिस वक्त उनके पास टीम आए तो उनको एग्जैक्ट डाटा दें, कोई भी चीज ना छुपाएं, ये बहुत जरूरी अमल है।
0: आवाम के लिए क्या पैगाम आपकी जानिब से रहेगा?
1: जहाँ तक हमारा जो राशन का सिलसिला है वो कंप्लीटली हर महीने आता है, राशन यहाँ पे अवेलेबल है। लोगों से ये अपील है कि अपना राशन जो है एग्जैक्ट जितना उनका मिलता है वो लिया करें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे साथ बात कर सकते हैं इस मसले में, तो हम पूरा सहयोग उनका करेंगे। और हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं ताकि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो स्मूथली चले, कोई भी उसमें कोताही ना करे, किसी किस्म की उसमें वो कमी ना आए।
0: डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कभी क्या होता है कि कुछ अफराद हमारे पास आए कि उन्होंने 1 महीने जो है वो अंगूठा या ओटीपी नहीं दिया डीलर के पास अपने,
1: जी
0: और
1: जी
0: नेक्स्ट मंथ जब वो अपने डीलर के पास गए तो उन्हें जवाब मिला कि आपका राशन आया ही नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो सारिफ हैं?
1: इसमें ये है कि देखें, जो राशन हमारा आता है वो जितना इशू होता है उतना ही राशन पीछे से भी आता है, और डीलर को भी उतना ही जितना उसने इशू किया होगा उतना ही कोटा उसको मिलता है। अब जहां तक एक कंज्यूमर जो है वो 1 महीना अंगूठा उसने नहीं लगाया तो उस महीने का राशन उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ अगर वो लगाने आता है, लेना चाहता है, वो लगाएगा और उसको नेक्स्ट मंथ का राशन मिलेगा। लेकिन प्रीवियस मंथ जिसमें उसने अपना थंब इम्प्रेशन या ओटीपी नहीं दिया तो उस महीने का राशन उसका लैप्स हो जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा।
0: क्या इसमें ये भी कोई प्रोविजन है कि जैसे कोई शख्स 5 6 महीने जो है वो राशन नहीं ले रहा है, ना ओटीपी लगा रहा है और ना वो थंब इम्प्रेशन लगा रहा है, तो क्या उसका राशन कार्ड सस्पेंड होता है?
1: इसमें यह है कि राशन कार्ड तो सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन अब सस्पिशियस कैटेगरी में वो आ जाता है, तो उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, क्या ये बंदा सच में है, ये यहीं पे है या बाहर का है, क्या कोई गलत एंट्री तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये अभी अपना थंब इम्प्रेशन नहीं लगा रहा है, ओटीपी नहीं रहा दे रहा है, या कोई भी इसमें राशन नहीं निकल रहा है इस बंदे का, तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये बंदा सही है क्या नहीं, उसके बाद उसके बारे में जो भी एक्शन होता है वो लिया जाता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया टीएसओ साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए और सार्फीन को इतनी अहम जानकारी से रोशनास करने के लिए। सामीन, आज के प्रोग्राम में हमने राशन कार्ड की अहमियत, इसके तरीक़ेकार, अहलियत और ज़रूरी दस्तावेजात के बारे में तफसील से जाना। अगर आप भी राशन कार्ड से मुतल्लिक किसी मालूमात या सहूलत से महरूम हैं तो अपने करीबी महकमा खुराक व रसद दफ्तर से राबता करें और सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान राजा रहबर जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़। सुबह।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुबह खैर। समय आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हाथ की सफाई फिल्म का ये नगमा।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:05 हुए हैं। अब पेश है रोजगार खबरनामा। इंडियन आर्मी की एक इतलाह के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेड कोर्स की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 30 है, जिसमें कोर इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम के लिए 8 असामियां, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6-6 असामियां और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और एमआईएससी इंजीनियरिंग के लिए 2-2 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीई, बीटेक या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री का होना जरूरी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 20 से 27 साल रखी गई है, जबकि रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी जाब्ते के मुताबिक उम्र की हद में छूट रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। समय वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, www.joinindianarmy.nic.in। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इतलाह के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 100 है, जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रेगुलर बेसिस के लिए 88 असामियां और बैकलॉग ऑफिसर के लिए 12 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना लाजमी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 23 से 32 साल, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 35 साल, एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 23 से 37 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 47 साल रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त की फीस जनरल

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रखी गई है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त की फीस माफ रखी गई है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://sbi.co.in। सामाइन वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, http://sbi.co.in। सामाइन, ये था रोजगार खबरनामा।

हम आकाशवाणी भद्रवा से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समय अब पेश है खुलासा, हमारे अब से लेकर रात 10 बजे तक रिले व नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का।

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय सुबह के 9:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का इंतजार कीजिए।

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ बड़ले खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं अभिलाषा शर्मा। कश्मीर घाटी दे शोपियां जिले च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तैहत इक बड़ी पदयात्रा आयोजित कीती जा'रदी ऐ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होर एह्दी अगुवाई करङन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें जागरूकता पैदा करने आली लघु फिल्म एक गलत कदम दा पोस्ट जारी कीता। मुक्खमंत्री हुंदे सलाहकार नासिर असलम वानी होरें जम्मू आले रविता दफ्तर च प्रतिनिधिमंडलें कन्नै गल्लबात कीती ते सार्वजनिक मुद्दें दा समें सिर नबेड़ा करने पर जोर दित्ता। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें जम्मू ते श्रीनगर दौनें शहरें लेई ट्रैफिक जाम घट्ट करने सरबंधी व्यापक योजना दी समीक्षा कीती ऐ ते मौसम विभाग ने जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज थमां लेइयै 5 मई तक्कर जम्मू कश्मीर च मौसम आम तौरा पर खुश्क बने दा रौह्ग। उआं दपैह्री शा पैह्ले किश टामी टामी थाहरें पर हल्की कनी कनून पेई सकदी ऐ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज।
1: शुक्रिया अभिलाषा। कश्मीर घाटी दे शोपियां जिले च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे तैह्त नशीले पदार्थें खलाफ अज्ज इक बड्डी पदयात्रा आयोजित कीती जा'रदी ऐ। इस अभियान दी अगुवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करङन, जेह्ड़े जंदी 11 अप्रैल थमां गै नशीले पदार्थें खलाफ शुरू कीते गेदे इस अभियान च अपनी सरगर्म भागीदारी बरोबर यकीनी बना'रदे न। शोपियां दे डिप्टी कमिशनर शिशिर गुप्ता होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् बड़ी बद्ध गिनतरी च नशे खलाफ लड़ाई आह्ले इस अभियान च शामल होन। पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आखेआ जे पदयात्रा लेई सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त करी लैते गेदे न। उनें आखेआ,
2: मेगा पदयात्रा का आयोजन किया गया है, उसमें एलजी साहब एज ए चीफ गेस्ट होंगे। यहाँ पर ये जो हमारा अभियान है, इसको हर घर तक पहुँचाना है, हर गांव मोहल्ले तक पहुँचाना है। जितने भी हमारे लोग हैं वो अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को इस नशे की जो बुरी आदत है से दूर रख सके। एक संकल्प जो हमारा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बुरी चीज को अकेला नहीं लड़ सकता है, इसको एक जन आंदोलन की तरह ही देखना है हमें, और इसको एक जन आंदोलन की तरह ही हमें इससे लड़ना है, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें लोगों की भागीदारी की बहुत जरूरत है।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें कल लोकभवन च नशे दी कबैतू खिलाफ जागरूकता आली इक लघु फिल्म एक गलत कदम दा पोस्टर जारी कीता। इस फिल्म च माहिरा टंडन होरें अदाकारी कीती दी ऐ, जेहड़ियां नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दियां यूथ एम्बेसडर न। एलजी होरें इस लघु फिल्म दी पूरी टीम गी बधाई ते शुभकामना दित्तियां। इस मौके पर फिल्म दी लखारन ते डायरेक्टर दिव्या टंडन, निर्माता सुमित टंडन ते होर भी दुए सदस्य उत्थे मौजूद हे। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई होरें कल लोकभवन जाइयै उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे नै मलाटी कीती। चिनार कोर दे जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह भी इस मौके उंदे कन्नै हे। तोआईं उद्योगें सरबंधी विभागी सलाहकार कमेटी नै तिरुचि सिवा हुंदी अगुवाई च उपराज्यपाल हुंदे कन्नै मलाटी कीती। एह्दे अलावा आचार्य महंत डॉ विवेक गुरू हुंदी अगुवाई आह्ले धर्म जागरण संस्थान धर्मार्थ ट्रस्ट भारत दे इक डेलीगेशनै भी एलजी हुंदे नै मिलियै उनेंगी गांदरबल दे शादीपुरा च सिंध ते जेलम दरियाएं दे पवित्र संगम पर औंदी 15 थमां 24 जुलाई तगर आयोजित होने आह्ले जम्मू कश्मीर दशहर कुंभ कन्नै जुड़े दे महत्वपूर्ण मामलें बारै जानकारी दित्ती। मुक्खमंत्री हुंदे सलाहकार नासिर असलम वानी होरें कल जम्मू आह्ले राबिता दफ्तर च आम लोकें तोड़ी पुज्ज बनाने आह्ला इक सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम लोआइयै लोकें दियें शकैतें ते परेशानियें गी सुनेआ। इस मौके पर खरी मती गिनतरी च लोकें ते डेलीगेशनें हिस्सा लैता। इस मौके पर सलाहकार होरें सरबंधत अधिकारियें गी मौके पर गै निर्देश जारी कीते जे ओह् लोकें आसेआ पुट्टे गेदे मामलें दा पैह्ल दी बिना उप्पर नबेड़ा यकीनी बनान। जेहड़े डेलीगेशनें सलाहकार हुंदे नै मलाटी कीती उंदे च जीसीसी गुड़ा सलाथिया, फोरम ऑफ बठिंडी वेलफेयर बोर्ड, सिटीजन्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू, राजस्व मैह्कमे दे रिटायर माइग्रेंट कर्मचारियें दा संगठन, जेके पीएससी ते जेके एसएसबी दे मतेहानें दे इच्छुक आवेदक ते कठुआ थमां आए दे किश लोक भी शामिल हे। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट दे जज जस्टिस अरविंद कुमार हुंदी अध्यक्षता आली न्यायिक ढांचागत सलाहकार कमेटी दे तालमेल लेई जस्टिस संजय धर होरें गी न्यायिक नोडल अधिकारी नियुक्त कीता ऐ। श्रीनगर च रजिस्ट्रार जनरल हुंदे दफ्तर पासेआ जारी हुक्मै मुजब एह नियुक्ति 18 मई 2026 गी जारी इक चिट्ठी मगरा न्यायिक बुनियादी ढांचे दे आंकलन बारे जानकारी देने ते सोआलें दे पर्चे दे सरबंधै च कीती गई ऐ। हुक्मै च आखेआ गेआ जे मुक्ख न्यायाधीश होरें इस नियुक्ति गी मंजूरी दित्ती ऐ तां जे पूरे केंद्र शासित प्रदेश च न्यायिक ढांचे दे तालमेल गी होर बधाया जाई सके। एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते डीटीएच पर भी सुनी सकदे ओ। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना'रदे ओ। उन बाकी दियें खबरें कन्नै अभिलाषा शर्मा।
0: मुख सचिव अटल डुल्लू होरें जम्मू ते श्रीनगर शहरें च ट्रैफिक दे रश गी घट्ट करने ते आओजाई दी स्थिति च सुधार लेई इक व्यापक कार्ययोजना दी अमलावरी दा जायजा लैने आस्तै ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली बारे खडेरी गेदी बक्ख बक्ख विषयें आली कमेटी दी पंजमी बैठक दी कल प्रधानता कीती। मुक्ख सचिव होरें गृह विभाग दे प्रधान सचिव हुंदी अगुवाई आली इस कमेटी दियें सफारशें दे महत्व पर लोह पांदे होई इंदी असरदार अमलावरी लेई इक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने ताईं आखेआ ऐ। मुक्ख सचिव होरें दौनें शहरें च सिड़कें गी चैड़ा करने, रोटरियां कायम करने ते नए होरनें मामलें च हासल प्रगति दी समीक्षा बी कीती। जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड ने 11वीं जमात दे सालाना प्राइवेट सत्र लई मंजूरी ते मतेहान आले फार्म जमा कराने सरबंधी कार्यक्रम अधिसूचित कर दित्ता ऐ, जेड़ा सोए ते स्याले आले दौनें गै जोनें सने जम्मू कश्मीर ते लद्दाख ते सब्भनें योग्य मेदवारें लई लागू होग। अधिसूचना मुजब मेदवार 5 मई थमां 2 जून तक्कर तय फीस दा भुगतान करियै आनलाइन ते आफलाइन दौनें तरीके राएं फार्म जमा कराई सकदे न, जिसलै के 3 थमां 6 जून तक्कर लेट फीस वसूली जाग। इस बारे होर जानकारी बोर्ड दी वैबसाइट jkbose.jk.gov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर इस महीने दी 31 तरीक गी आकाशवाणी थमां प्रसारित होने आले मन की बात कार्यक्रम च इक बारी फ्ही अपने विचार सांझे करगन। एह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम दी 134वीं कड़ी होग। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम आस्तै अपने विचार ते सुझाव भेजी सकदे न। एह सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम राएं भी दित्ते जाई सकदे न। लोक 1922 पर मिस कॉल करियै ते SMS राएं हासल लिंक थमां भी सिद्धे प्रधानमंत्री होरें गी सुझाव भेजी सकदे न। सुझाव 29 तरीक तक्कर स्वीकार कीते जांगन। मौसम विभाग ने अज्जै थमां 5 मई तोड़ी प्रदेश च मौसम आम तौरा पर खुश्क रौह्ने ते दपैह्री शा पैह्ले किश टामी टामी थाह्रें पर हल्की कनी कनोन दी भविक्खवाणी कीती ऐ। विभाग मुजब 26 थमां 28 मई बश्कार मौसम गर्म ते खुश्क रौह्ग, जिसलै के 29 थमां 31 मई बश्कार किश थाह्रें पर हौली बरखा बरी सकदी ऐ। इस बारे होर ब्यौरे कन्नै मौसम विभाग दे डायरेक्टर मुख्तार अहमद होर।
3: 26 से लेकर 28 इवनिंग तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। 28-29 के बीच में भी एक स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर जो है देखा जा सकता है। ओवरऑल जो फिलहाल कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है टिल एंडिंग मई तक, पर 26 ऑनवर्ड्स मौसम जो है ड्राई है, तो एक बार फिर टेम्परेचर्स में भी जो है इजाफा होगा और हॉट एंड ड्राई वेदर जनरली रहेगा यहाँ वैली के अंदर, और इस तरह जम्मू डिवीजन के अंदर फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स हीट वेव लाइक कंडीशन जो एक बार फिर देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है तो मिक्स टाइप ऑफ वेदर रहने के चांस है टिल एंडिंग में।
0: रामबन जिले च लखपति दीदी पहलकदमी ग्रामीण महिलाएं गी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तैहत 1 लाख रुपए या ओह्दे शा मती सलाना आमदन हासल करने लेई सशक्त बनाने आस्तै बड्डे बदलाव आनने आली पहलकदमी दे रूपै च उभरियै सामने आवा'रदी ऐ, जेह्दे तैहत महिलाएं गी हर महीने तकरीबन 10,000 रुपए आमदन हासल करने लेई सिखलाई ते मार्गदर्शन दित्ता जंदा ऐ। इन्ना गै नेईं, इस पहलकदमी तैहत ग्रामीण महिलाएं गी टिकाऊ कारोबार शुरू करने ते उसी अग्गे बधाने च मदद करने लई मार्गदर्शन, पैहे ते सिखलाई वगैरा उपलब्ध भी करवाई जा करदी ऐ। ए पहलकदमी मकामी प्रशासन ते जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण दे सहयोग कन्नै तोड़ चाढ़ी जा करदी ऐ। इस बारे आकाशवाणी समाचार कन्नै अपने विचार सांझे करदे होई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तैहत आप सहायता समूह दियां इक लाभार्थी बबली देवी होरें आखिया,
4: मैंने पहले एक ग्रुप बनाया था, फिर आस्ता आस्ता 40, 50, 100, 150 फिर पूरे क्लस्टर को मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो वहाँ हमें सब्सिडी मिलती थी 80%। चाहे हम मशरूम लगाए, हमारी लेडीज एग्रीकल्चर का काम करें या पोल्ट्री का करें, कुछ भी, आज हमारी 20-25 लेडीज लखपति दीदी निकली।
1: अखीर खास खास खबर एक बार पढ़ती है। कश्मीर घाटी के शोपियां जिले च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत एक बड़ी पदयात्रा आयोजित की

0: कीती जा'रदी ऐ, जेह्दी अगुवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होर करङन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें नशे खलाफ जागरूकता पैदा करने आली लघु फिल्म एक गलत कदम दा पोस्टर जारी कीता। मुक्खमंत्री हुंदे सलाहकार नासिर असलम वाणी होरें जम्मू आह्ले राबता दफ्तर च प्रतिनिधिमंडलें कन्नै गल्लबात कीती ते सार्वजनिक मुद्दें दा समें सिर नबेड़ा करने पर जोर दित्ता। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें जम्मू ते श्रीनगर दौनें शहरें लेई ट्रैफिक जाम घट्ट करने सरबंधी व्यापक योजना दी समीक्षा कीती ते मौसम विभाग ने जानकारी दित्ती है जे अज्जै थमां लेइयै 25 मई तोड़ी जम्मू कश्मीर च मौसम आम तौरै पर खुश्क बने दा रहौग। उआं दपैह्री शा पैह्ले किश टामी-टामी थाहरें पर हल्की कनी कनून पेई सकदी है। इदे कन्ने गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कश्मीरी मौसीकी। प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं रासा जावदानी का कलाम माजिद बशीर की आवाज़ में।

समय प्रोग्राम के आखिर में पेश है अल्लाह रखा की आवाज़ में कश्मीरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी मौसिकी। ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों

उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इनकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती

दिखाई पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल

करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

खुशियों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका, तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहां कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों

दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं, काफी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी, मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े, भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

जी, तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहां हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिजाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है।

0: और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के आमतौर पर सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।
1: होए होए कान में झुमके, कान में झुमके, जाल में ठुमके, नैनों में जाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

निगाहों ने मार डाला, होए होए होए धूप है चंदा जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है हाथ में छल्ला सर पर पल्ला।

मेरे बिन दिल का ये बंगला पड़ा है सोना, ये बंगला पड़ा है सोना, मेरे बिन दिल का।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिज़ाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाजार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिजाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें, लेयर्स या घंटियां लगी होती हैं और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है।

अलावा मल्टी चेन झुमकास में झुमकी के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके। और मोती झुमका यानी पर्ल, ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं, जिनमें सफ़ेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाजार में मिलते हैं, ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे
1: जय घोष वंदे मातरम
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
1: मातरम
2: दोस्तों हमारी फिल्मों में हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे, फिलहाल तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूं आगे बढ़ाया।

0: उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
2: ना ना ना।
3: कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही है झुमकों की। अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के, या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं। कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर से लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो है झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा ईयरिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है। खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है, और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

0: जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरेली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की। फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज़ दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाजें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें यह भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे, बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक की ढूंढ पाया हूं। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ, कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है, ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम, वहां मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज

एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं। अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा। बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहां करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था, बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में। अच्छा, मैं

हूँ तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहाँ, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है। इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है, वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है, और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है। बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के, और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखीरे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तातैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा, लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद्रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योति तो डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया।

0: कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों

0: बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: मारे कोई किसे को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से, मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डैनी पमार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान की बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
3: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे।

0: और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है आज! मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
1: स्वागत है।
0: ओह आप यहां?
1: हाँ जी, मैं यहां कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूं। ऐसे
0: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूं रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशिमुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी मेरे देवता,
1: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
2: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी पागल चकोर, ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहो।
2: नगर के राजा ने
0: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
0: इस पागलपन
2: सहायता की
1: रानी, महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
0: स्वामी
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई है?
0: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम,
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी यह केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ, मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी।

0: क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: यह हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो।
1: नहीं
0: रानी, सुनो तुम।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: नाना,
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: और... ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।
0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका। क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
2: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
1: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
2: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
1: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें यह तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
2: जो आज्ञा।
1: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
1: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: हाँ जी, रणसिंह जी आए हैं।
2: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
1: रणसिंह, युद्धभूमि का क्या समाचार है?
2: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
1: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
1: हाँ तारा, मेरी प्यारी लड़की, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रही है?
1: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
4: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली
1: रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शीघ्र आकर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, पर आज मैं कैसी लग रही हूं ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है। तारा, जल्दी कर, लगड़पण ठहरिए। रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस बस, अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना। और कहना, कहना रानी ने वह विजय मार सामंत के लिए दी है। विजय

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो?
3: हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक ना लगे।
3: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी है।
0: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
2: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ
5: मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
6: मैं जाता हूँ सामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं सामन? ठहरिए, ठहरिए सामन।
7: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
1: जी सामंत।
7: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
1: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
5: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने
2: अच्छा।
3: मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ।
3: जी जी।
2: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है।
2: ओहो।
3: तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।
2: हाँ।
3: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह।
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें।
2: हाँ।
3: तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी,
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का
2: कितने
3: हूँ।
2: दूर है छतरपुर से ये गांव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी
2: अच्छा
3: के आगे है पहरा,
2: ओके। तो
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर, बहुत ही।
2: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
3: मैं वहां पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाउरे, बुंदेली फिल्म थी,
2: हाँ
3: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से, उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक,
2: अरे वाह,
3: जीजाउरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
2: क्या
3: टाइटल
2: बात है।
3: सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
3: उस
2: लोकगीत?
3: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
2: हाँ
3: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
2: उपटा लगे तुंगरिये,
3: उंगरिया
2: क्या
3: मतलब
2: बात
3: ना,
2: है।
3: कहाँ ले आए राजा
2: क्योंकि
3: कुमारिया में,
2: मतलब
3: लाइक
2: बुंदेलखंड,
3: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
2: हाँ
3: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
2: हाँ
3: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो
3: तो
2: मजा आ गया मुझे सुन
3: बहुत ही मजा आ गया, मतलब
2: के
3: बहुत मजा आ गया। तो
2: तो।
3: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
2: हाँ
3: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो,
2: अच्छा,
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर, तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
2: अरे
3: और
2: बाबा
3: मैं नाइन्थ
2: रे,
3: क्लास में पढ़ता था उस समय।
2: ठीक
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम ऊपर छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
2: हाँ
3: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
2: तो
3: लाइक
2: बुंदेली में था ये?
3: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
2: हाँ
3: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो
2: हाँ
3: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था, तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
2: वाह,
3: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाथ विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
2: ओ
3: बड़े
2: वो तो
3: एक्टर
2: पन्ना
3: हैं,
2: के ही
3: जो
2: है।
3: पन्ना के ही हैं, तो
2: हाँ
3: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
2: हाँ
3: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
2: अरे
3: इन्हें
2: वाह,
3: कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
2: और
3: आया।
2: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
3: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है।
2: डायरी में लिख गया?
3: हाँ, तो मैं लिख
2: अरे
3: लिया
2: क्या
3: कि अभी
2: बात है,
3: मुझे पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
2: अभी
3: से
2: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
3: जी जी
2: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
3: हाँ जी
2: तो
3: जी
2: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
3: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
2: गोविंदा
3: गाना
2: की
3: गाना सुनता
2: फिल्म।
3: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
2: हाँ
3: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
2: हाँ
3: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
2: क्या बात
3: ओए।
2: है,
3: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
2: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
3: बहुत
2: होते हैं
3: ही।
2: और ये उस दौर की याद लेके
3: जी
2: आते
3: जी
2: हैं।
3: जी हमने
2: बातचीत
3: बहुत देखा है
2: करेंगे।
3: फिल्म को,
2: वाह।
3: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
2: हाँ,
3: गुंगा,
2: क्या
3: जो
2: बात
3: भी
2: है,
3: CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
2: वाह। ये
3: हाँ
2: गाना सुनते
3: जी।
2: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं
1: जी,
0: और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो
1: जी,
0: तब तक एनएसडी में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाई दे
0: और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है, और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया, और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिससे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसडी के गेट पर पहुँचा और मैं एनएसडी, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक, उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो,
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्हें बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा
1: छोटे
0: वाला।
1: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
0: हाँ
1: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
0: रिकॉर्ड कर
1: इसमें
0: दो।
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
0: अरे
1: तो
0: गजब,
1: तुम अनुशासित
0: उसने
1: हो,
0: 1 मिनट में सब बोल
1: सब
0: दिया।
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो
1: तो मैंने
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: किस
1: में,
0: शहर में था।
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने ये ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सत्यनाग का नाटक किया,
0: बिल्कुल।
1: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें, उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल।
1: आप जानते होंगे बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप।
1: तो हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है प्लीज, मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
0: गजब।
1: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं

0: मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल।
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा
1: हाँ
0: मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते, क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
1: अच्छा।
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिले और तुम बुंदेलखंड से हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ।
0: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं,
1: अरे
0: बड़े बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे, वो उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर।
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: बहुत
1: रे।
0: कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे, इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार, मैं इधर सुना दूं आपको।
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है।
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह।
0: कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा
1: वाह।
0: अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज से 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, सद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह
0: आखिरी बंदे।

0: के दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला। फिर मेला में फिर दद्दा ने एक गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह,
0: मुखा मेला जाए।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: कि बचपन उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी
1: ये
0: जो
1: होता
0: राइटर
1: था
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल।
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपये का 5 रुपये का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीज़ें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहाँ
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया, और वहाँ से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहाँ पर जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुँचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, मैं और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम 3 लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पर गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं तो यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, और खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम 1 महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो गाना ऐसा कुछ था।

0: असहमे है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: के शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ, पक्का
1: सुनेंगे।
0: पक्का चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: ओंकारा
0: गाना,
1: का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार गाना
0: सुंदर
1: है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ, तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली भी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जुगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
1: चालू हो गया। फिर उसके
0: क्या
1: बाद
0: बात
1: मैं
0: है।
1: पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना। तो
0: अच्छा,
1: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन,
0: वो बोर्ड और
1: वो तो
0: वो
1: छूटे नहीं है,
0: धुरंधर
1: वो
0: जी याद आ
1: रिकॉर्डिंग तो
0: रहे।
1: छूटे नहीं है,
0: हाँ
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
0: अच्छा।
1: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
0: लेकिन
1: किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो
0: हो
1: गया,
0: गया, और वहीं वो
1: और वो
0: धुरंधर जी
1: धुरंधर जी
0: मिले
1: से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी।
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
0: हाँ
1: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
0: हाँ
1: जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
0: बिल्कुल
1: दुनिया में होता है।
0: जी,
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
0: हाँ,
1: वो
0: परिवार
1: प्यार
0: के एक
1: मिलता, परिवार के
0: सदस्य।
1: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप,
0: हाँ,
1: तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा
0: बस।
1: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी,
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे
0: लेकिन
1: को,
0: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
1: हाँ
0: बहुत
1: मैं
0: महत्वपूर्ण
1: बता
0: है।
1: रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
0: हाँ
1: तो लोग हंसते थे,
0: हाँ
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे
0: हाँ
1: लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके,
0: हाँ हाँ हाँ
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो।
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया,
0: हाँ
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस
0: हाँ
1: पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो
0: हाँ
1: शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने
0: हाँ
1: सा को सही बोला था,
0: हाँ
1: शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके
1: तो
0: ओके
1: ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया, लोअर डेप नाटक में दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवत सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है,
0: वाह
1: और
0: वाह
1: कैरेक्टर
0: वाह।
1: बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल।
1: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे, बंसी कॉल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा।
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजेंडर लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
0: वहां
1: उन्होंने,
0: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, NSD से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरह बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ

0: में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: तो वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है।
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि
1: ओके
0: वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल सॉन्ग
1: बात है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी जी जी
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा, अब
1: बेचारा।
0: वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
1: बिल्कुल
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं,
1: वाह,
0: तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था। और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सम्मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल

0: वेलवेट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुंदर
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: तो
1: और
0: बहुत खुशी हुई
1: सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और
0: भी
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदैया मैं कहाँ से कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था। और
1: सफर है,
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये आकाशवाणी भद्रवाहे FM 101 MHz पर समय शाम के 5 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में भद्रवाही मौसिकी के साथ। प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं रविदीप शर्मा का गाया ये भद्रवाही भजन, जिसे लिखा है मिल्खी राम मस्ताना ने।

समीना, अभी आप सुन रहे थे केवल शान की आवाज़ में लोकगीत। आइए आप सुनते हैं मिल्खी राम मस्ताना की आवाज़ में ये भद्रवाही लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भद्रवाही मौसीकी। ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। समय 5:30 होने को हैं। आइए आप सुनते हैं किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किसान वाणी।

0: इस प्रोग्राम रे प्रायोजकन कृषि ते कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ते आजमी से साथी मेरे प्रोग्राम में सहयोग दे रहे और संगीता जी। संगीता जी जय हिंद। ते किसानवाणी प्रोग्राम सुनने वाले से भी किसान लान जी भी जय हिंद।
1: तुसें चलो जय हिंद मुकेश जी, ते मेरी बहुत ही अच्छे सारे किसान लान बेन बुजुर्गन जो जय हिंद ते नमस्कार। ते और कौन और बने आजकल कोड़ पीछे से जमींदारी
0: महाराज जी? अजकल अच्छी जमींदार किरता बुरी तबाही है। नासन कोई थाकी मेले नासन कुछ कुछ जग जून डा बार कुछ गाने जो टाइम नहीं। अजकल बाजारे जिन्हें जो भी फुर्सत नहीं देने लोन वाले अस जमींदार बोतम था कि जे कि जमींदारी हूं तकर बड़ी अच्छी चली रहा हो रही है। टाइम टाइम री बारिश भी रहा हो रही है, धुप्पा भी नहीं सी रहा और थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा और हर काम करने जो टाइम मिल रहा हो हूँ तगर मौसम री असन बड़ी ज़्यादा अक साथ रहा हूँ कि अच्छे तरीके से फसल बाड़ी जै कंड इलाके में कुकड़ी तो बेई छिड उन्हीं आकार देने तो टाइम ए जी जोर है इन जाना फुहारा जे झेड़ री बोती रहा चिंता ऐसे कौन बोती कि साथ साथ ही घास लेगी गाते
1: जी
0: ता इसे किसान लाड़न जाने साथ साथ ही ता आकार भी दीते लोड़े जाना दुई बार कुकड़ी नीतन तो उन्हें जरा आकार रो भी टाइम है जै कंड इलाको जाना बशाखो बाटल बोते जन करो तो घास ज़्यादा लग गुरु है कुकड़ी की फसली में तो साथ साथ ही जै आकार और जै नेदा ही बोचे तो तभी जा रही है बस
1: जी
0: तैते मां अस अजकाल बिजी हम तो साथ साथ ही भाई है जो कि छे छे किसान लान जन करो बाटल जेठो बाटल बोते और तैना हूँ जे रे उडारा बेने में बिजी है ना तो छेटल कर कम भी होने मगर हर पास ही जनता कमरो घेर है छेटल में भी है तो मस्त होनी इसे जाना छेटला लाने वाले खास कर तक केलड़े में मैं सेठला गेड़ी रहा और मेनू केटी रहा और सेठला केरी साफ सफाई केरी रहा और थाला रहा लग बग बेडे जोरिन
1: जी
0: किसी जेठ लास्ट जर में रुई न शुरू करतन किसी हाड़े में भी रूतन और लग बग तैयारी ऐसी चलती है ना साफ सफाई भी जरूरी सेठला केरी साथ साथ ही जा कोई कोल पेरी ज्यादा बरसात ज्यादा बोर थी पितरी साल यार कितरे फला डोर थी है
1: जी
0: बड़े ज्यादा नुकसान भी बोर थी होते कई जाना सेठ लगे रहे डालें जाते पास जो कुल्ला भी टूटरी भी होनी ना तो बस तसे में किसान ला आजकल बिजी हैं एक उसके सेठे तक पानी पुजाम पेरे तो उड्डा बोथी आज तक गवर्नमेंट भी जाए तो सहयोग कर चे तना भी पैसों देतन कि जैडिया का पूरा ढालो जाए टुटी जोर होता था जे गवर्नमेंट भी जाए पैसों दे जे तक कुल बनाने लिए पहले तो उड्डा बोथी आज जड़ी पैसों नहीं टाइम और पूजो तैयारी आज उड्डा भी कीर्तन लोग जड़ी एक ही डाले माँ दस पार निजान कर सेठन था अकक दू दू मैं तै उड भी करता तै कुल अपने सेठ तक पजे छन पानी ते हूँ नजर है मेरे जो टाइम है कि असन फुर्सत नहीं कुछ भी कम
1: जी
0: है
1: बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, यार हूँ जो कि हूँ जमींदार भरपूर हूँ टाइम है ते असें को केह कि अपना किस क्योंकि हिंदा चपाती को बहुत है कि बाज औकात जरा बीड़ा बीड़ा आने तेरा डोली गया चिन ज्यादा पे गया चिन नैल में जन साले असें बनोरे बहुत जन मरा इसे सिंचाई ज्यादा पूरी इस साइड उड़ा बचे तो तेरा मैं बहुत है कि बाज औकात बैनल गोड़ बिछड़ते या मिट्टी भी बैनल या ज्यादा बिछड़चन तस जाए सी पानी दिन तन बंद बही गाते हैं तो लिहाज असें को केरू कि जिस लोग असें गए तो अपने शाड़ शुहाड़ रही नजर गुजर देनी है और कौन सी पिठारी अगर तेज ब्लॉकेज बोरी है
0: जी
1: तो असें दूर लोड़ की चाले नैली बिल्कुल साफ सुथरी लोड़ करी ताकि पानी जन तन बिल्कुल बगैर कौन सी रोक टोका अगर वो मैं तो रहे किसकी मौसम रहा कोई भी मिजाजर पत्र भाई कस टाइम झाड़ी भाई कस टाइम धुप नहीं
0: जी
1: से
0: जी बिल्कुल
1: ठीक है ठीक है रुको तो क्या आंदा धुंध बारिश से शुरू भी गाचे तो अगर पहले स्टैगनेशन बोली पानी रुकी गाल हुआ अगर तन ऐसी वजह से रुकावट की वजह से तो तन सकून बहुत है कि इस साइड जने या उड़ार जने जब कोई जमीन जमीन है तो सकून बहुत है कि सर सर पानी धड़ी जा बोगा देते
0: जी
1: दस जाए से कौन बताइए आसन छाटा काटने माँ या और भी कोई जब भी कोई चीज़ जमींदारी आए कल दस माह आसन रुकावट ये जिस चले आसन को नोट करूँ कि टाइम केट तो आस ही होना गई था तना एन ये जी कोई अगर रुकावट आन तना आसन दूर करने की पूरी कोशिश की रही लोड़े
0: जी यार भाई जमींदारी तीस चलती रह चे अभी मौसम पर निर्भर बोचे अगर 21-25 साल अगर मौसम अच्छा रहो तो फसल भी छेल बोचे कंची साले में ज़्यादा बरसात बेगा चे या जब पितरी साले बहूँ या फिर ज़्यादा शो बेगा ते तत्तन से भी फसल और नुकसान बोते
1: जी
0: या फसल लाने में इसे लोग इस जमाने में बड़े ढीले मतलब कई उड़ारन जाना छड़ी दीतरन जड़ी की तेन पुजगाते ने भोजन से गाड़ा लाथी पहले जंगलन में जमीन बोथी तेना उड़ारा खिलन
1: बिल्कुल
0: या तैल बजर उड़ार लानू है पहले अस इतरू जमीन बहुत थी असन का, या आज भी आए खिली छाटे, लेकिन पहले हर वैरायटी अस अपनी जमीनी में लाते थे। ता अपने देशी तरीके से खेती बाड़ी बहुत थी, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी बहुत थी, गोबर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। ता आज भी थोड़ी सी टेक्निक तो बदलो ही जो रही है। ता पहले जनसरा आज भी तना ईशा बुजुर्ग कर देना पात्र उड़ारा बहुत थी, तन कर नौवा है जो भी अस जोतम
1: बिल्कुल
0: आन तना खेला
1: जी
0: कुल थाली बागली भोली, मेउठलू भोलू, बंजरू भोलू, तो दाल आलू भोलू, मतलब कि ऐसा वैसे तने बिगड़ी कर नौवन कि जो कि तन पुराने बुजुर्ग तन उड़ारनों में तना फसल लाता थी
1: बिल्कुल
0: और ता तन के नौवा हूं तक तना है जो चालतन।
1: जी
0: आज ला लेता कुकड़ी केरी फसल लानी है या दाला वगैरह सब्जी वगैरह लातन, ता बाकी तना पुरानी रिवायती फसल वो थी, सेव लाते थे, बजर भंग लाते थे, फूलन लाते थे, ढलेव लाते थे, कोडलो लाते थे, तना पुरानी फसल बिल्कुल ही खत्म भेजरीन। ते आज अक फॉर्मेलिटीज ही पूरी करनी से किसान लाएं जड़ी कुकड़ी ले था, बस कुकड़ी लेनी या कुछ कई एजुशे कई किसान ला देना कैबली लातन। आज नवी नवी फसलन मटर लातन, सब्जी की और ज्यादा कर ज्यादा कारोबार करते, लेकिन जना पुरानी इसी रिवायती फसल थी तन आज कौन न लई हो, जन्मा
1: बिल्कुल
0: ताकत भी थी, जना जन खाने से शो शरीर तंदुरुस्त रहा तो थी हो, और तय सादी रोटी तय सिंपल रोटी ड्लेव फुल ना सुनते थी कि तसेरी रोटी खाते थी, इतने रू भात खाते थे,
1: जी
0: मगर तना चीज़ आज छेपी जोरी जै बाजर बांग बो थी तसेरी फलवार खाते थे, सीउल बो थी तसेरी फलवार खाते थे। तो आज तना चीज़ असल नहीं होना थी ना, ते आज जाना उडारा बिगड़ी या जाना शी खिली रेखरे निशे किसान लाएं, तो तसेले भी आक कदम उठाओ सरकार की भाई ताड़ी लवेंडर लात। ता कई इशे बढ़लाए माँ इलाके रंजन से केलड़े माँ एरता मास गुतासे में एरता मास तेर दिन जमीन उन मतने लेवेंडर खेती शुरू की।
1: जी
0: ता
1: बिल्कुल
0: लेवेंडर खेती भी एक अच्छी खेती रहा एक इस टाइम, लेकिन इस जमाने में लेवेंडर भी मिला लगते कि बेले बेले असेरी कीमत जै डाउन भेजे तट है इशे किसान करो दिल टूटी जो
1: बिल्कुल
0: पहले आ बिल्कुल आसमाने पुट चढ़ी असेरी कीमत,
1: जी
0: कई लोगों फायदा उठाओ से और टाई चोर साल, लेकिन तलपाती आस्ता आस्ता असेरी कीमत जाए ता जस भी पूछूं तो सेरी कीमत घटे।
1: जी
0: ता ऐसा सोचा इसी इशे के लवेंडर तो लग रहे जो खेती बाड़ी के तन, लेकिन जितरो फायदो पहले बोथू तितरो आज न बोए। हालांकि ऐसी बड़ी मशहूरी की सरकार इट्ठा जनसरा मिला लगते जिन वाले इस जूने में शायद मेलो बोए लवेंडर फेस्टिवल, ता बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते ना सेरी कि शे किसान ला ज़्यादा कर ज़्यादा लवेंडर खेती करें, लेकिन जनी लोरो तो तन के अगर कोई जानकारी गिनतम तो ऐसी कीमत ज़्यादा था घटी जो रही है।
1: बिल्कुल और
0: ता
1: टैग मेलो है
0: जी जी
1: सर
0: ऐसे जीआई टैग्स
1: आक
0: है मेल्ट हो
1: जीआई
0: पूरे
1: टैग
0: आक हिंदुस्तान है मक जै बर्थ प्लेस बोचे जन्म धरती बोचे जै
1: जी जी
0: कैंचरी तै बडला है मा
1: बड़ा
0: लेवेंडर
1: जी
0: जन्म धरती मानी जैन की ऐसे जना माननीय प्रधानमंत्री तन के जुबानी पुर रही बडला है 1900 की जठाई लेवेंडर शुरू बोरो की तै बडला है कि
1: बड़ा
0: टाउन है
1: जी
0: कस्बे में बोरो,
1: जी
0: लेकिन आस लोग पात्रों में रहा है और फायदों सालने वाले फायदों भी सालो। ते अगर सरकारी का विषय है विनती की भाई एस अगर जीआई टैग मिल रो तो ऐसे कीमत भी बा दे ताकि शे किसान ला एस फसली लाने में नाराज ना बोन।
1: बिल्कुल
0: ता अब फसले लाने रिया से आनी कौन है ऐसे लेवेंडर की एक ही बार लानो 10 बार ऐसा वाला से फिर तस्मा कोई नवी फसल नहीं लानी, एक ही बार ऐसे और बूटो लानो असी फिर तसेरी असी नित गुद केरनी खाद वगैरह छाननी है, ते साले में जितनी बार ऐसे जन फोड़ू सुनू या किच भी आए ता तसेरी असी ता चुन चन के ता साले में दुई नी का एक ही साल है, एक ही टाइम है ज्यादा आसमा निस्ते तेल और एक ही टाइम है आसमा घट निस्ते, साले में दुई बार नेला ते
1: जी
0: शेरा।
1: जी
0: ते आसमा असी कोशिश करनी कि जाना विषय ना बड़े बड़े उन्नत किसान ना जन सरा कई हूँ नजर मशहूर हैं जन करो हर कैंचर जुबानी पर तन कर नौ में कि जन सरा सैरनर पहले से गुतासर कुंजलाल थी है तनी असेरी जाए खेती बाड़ी अपने गुतासे में शुरू की, तल पत्ती से निसे लेर तर निसे तना भारत भूषण जी
1: बिल्कुल
0: तैना ता नेशनल अवार्ड सिस्टम यानी कि अवार्ड भी गिनो एस कमे मा तल पत्ती से बड़ा रा तोकीर बागवान जी एना भी एसमा नेशनल अवार्ड हासिल कियो, लेकिन जन सर ना बड़े बड़े लोगन तो एनी होरन भी सुझाव लोड़े दित्रो जना निके छुके किसान हन तो तन की मदद लोड़े कियोरी बूटो यानी कीमतन देनो या फ्री ऑफ कॉस्ट देनो, तो सारी जानकारी अनकर असन मिल ही सकचे सिर्फ असन अक मन लोड़ ते चीज़ों की ऐसी लेवेंडर खेती करनी है। फिर ऐसा इनका गई तो खुले दिले से इनसे गल करता लानरो तरी को भी पालनरो तरी को भी और जखना इसी फसल तैयार हो चे तो बेचनरो भी ऐसी कांटेक्ट एनए से करना है ता या तो ना एपू तैड़ी विषय उड़ारे पूजन या तट फूड चुनते कोई भी जब ऐसे अगर सिस्टम होते तो
1: जी
0: पान होता
1: बिल्कुल
0: चाचर से ही जाए ऐसी लेवेंडर खेती भी कामयाब बेगा चे और ईशा जाना खिल लखा बड़ा उड़ारन ते तैना भी लेगी गातन ऐस चीजी जाए ता न बांदर खाए न चुड़लू पेन न कोई जानवर खाए न गोरू खान न बैडा खान एक एरी चीजें की जाए लगातार ईशे उड़ारे में राली और सिर्फ हेर गेश करने की जरूरत पे चे कि भाई नित गुद कुछ के पैने की जरूरत पे था पानी भी देनु पे थे कुछ के खुराक भी देनी पे गोबर तथा भी असन असमा छड़नों
1: बिल्कुल
0: पे थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल कैसी है ना जै अगर हसमा अगर जीआई टैग में लड़ते हो तो इनके कतरी आप बड़ भरना या चीजें कुदरतारी पर वही साथ शायद जै आसने से घाटा हुआ किस इसे किसान करो दिल टूटी जो होता है सिर्फ वजह से तो आस ओपू हम किसकी आस ही केर जाता है सही तरीके से नहीं केरी शायद और तस जैसे को मोह की ऐसा फूड सब घर बड़ी गल है ऐसा फूड जनन तना आक मेडिसिनल प्लांट है तो फूड घर बड़ी इस्तेमाल बहुत है शोषण अगर फूड बहुत है सारा खूबसूरत फूड हो है ना और ऐसा अगर तेल काटन तो तेल जाता है जॉइंट पेन बॉय या किस या कॉस्मेटिक साधन किस तस जैसे ऐसा बड़ी बड़ी तस्मा यूज बहुत है लेकिन चूंकि अस कौन कहते हैं कि अस सिर्फ सुनते हैं कि गवर्नमेंट है जी अस जीआई टैग दे देते लेकिन तो कस वजह से ही तना अस जानने की कोशिश न करम लापरवाही करते हैं अस सिर्फ ऐसे कौन बोलते कि सिर्फ पैदावार से तस्मा घाटा बोलने चांसेस बही रह रहे हैं तो
0: जी
1: असें कौन थोड़े मुकीर मुकेश जी कि अगर कोई जरी असन कोई त्रासदी है जरा रही है कोई असन पता लगी रहा कि अस खेती में इस घाटा हो रहा हो तो असें कौन थोड़े की कि फटाफट जन इशे उन्नत किसान तन से गलबात लोड़े की या टोल फ्री नंबर आक इशे किसान हेल्पलाइन समझा कि आया आक जै रात दिहाड़ी निशुल्क चल चे ते आसें तस फुड़ भी कॉन्टैक्ट किया ते जन उलोरा माहिर एक्सपर्ट जन विशारे बात तन करा दे सलाह गिने लोड़े सलाह मशवरे से जन भी काम क्यों गा ते तन तस काम कामे में कामयाबी जरूर मिल चे आसन ते लिहाजा अगर ऐसी कोई गल है कि ऐसा सम घाटल हो रहा है तो आसें दिल नहीं तोड़नो आसें को नोड़ की कोशिश लोड़े पूरी की कि ऐसा अस कामयाब हुई काम और कोई भी कमी पेशी अगर आए तो डिपार्टमेंट रबते से रेता तो तथा फिर पूरी जानकारी असें अपना कारोबार से की और लोड़े
0: जी भाई यार कोई भी काम में था सहेली असन जानकारी बड़ी जरूरी है तो ले रेडियो रे माध्यम से भी या टीवी चैनल भी आज
1: बिल्कुल
0: हर घरे में चलते आज तो हर किसी का मोबाइल या तट भी जानकारी गिन नहीं सकता मगर जरूरी गल है कि पहले दी चलसी असन बड़ी ज़्यादा जरूरी है चलो लवेंडरे लानो तो तसेली असन एक मन बनाने पे थे हेरा मास्ता जैसे तुसी जो कि एक कॉस्मेटिक भी बोचे या मेडिसिन भी आए कुछ भी आए
1: बिल्कुल
0: जै परफ्यूम में भी इस्तेमाल
1: जी
0: बोते ऐसी साबुन में इस्तेमाल बोते अगरबत्ती में इस्तेमाल बोते ता कई दवाइन में भी ऐसे रो तेल जैसा इस्तेमाल बोते ता असी जै कोशिश करनी कि अगर ऐसी चीज़ रही अस खेती बाड़ी करम तो फिर या सरकारी अगर असन का छेल भंडार है होना तो अस सरकारी से लड़ी भी सकता हूँ इसेरी कीमत अस बधाई भी सकता हूँ
1: बिल्कुल
0: या असन का माल डंपे नहीं बेचनो फिर इसेरी कीमत ऑटोमेटिक बेदी गाचे तो सिर्फ अगर असन का अथी नहीं किच खाली सोचने लग रहे तंत्र से भी किच ना बने तो ले ले जो चाहते कि जाना दिया इसे एक्सपर्ट एन सी असी गलबात की लोड़े या कोई इनको डिपार्टमेंट है तसी भी असी गल लोड़े की रही चांसर से शुरू जाता है लेवेंडर जैसे फसलें रहता है कामयाब भी सकते
1: बिल्कुल
0: हैं फिर ऐसा अपने प्रोग्राम में गलबात भी सुनाते रहते हैं तो आज भी ऐसे ही है ना प्रोग्रेसिव किसान ने इसे जानी ऐसे लेवेंडर की खेती की हुई है और शायद ये जो भी कैरी रहा और इनका जो सुझाव है लोगों सुनाने लिए ऐसी इनसे गलबात की हुई है एना गुतासर रहने वाले और इनके नाम है श्री कुंजलाल जी
1: जी
0: तो इनसे गलबात करता हूँ पहले सुनता हूँ संदेश
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: सिर्फ गल क्या कि लड़किया से कि अगर कौन टाइम में आशा है तन कि फोड़ू जन तन सुकीरा हुए या जन झालू है तन कि आस नहीं हिडू से ले आते तो आशे को लड़की रू कि फिल फॉरन या तो आशे अपने डिपार्टमेंट से रात लड़की रू तो या जन भी आसन सुझाओ मैल रहन जैसे आशे ऑर्गेनिक तरीके से खाद तैयार की रही है वर्मी कंपोस्ट है या कि और भी जरा गोबर श्रेन था तो आशे तड़की था तसरी कोटिंग लोड़े की जीलन तस्सी कौन बहुत है कि तस्सी न्यूट्रिशन में अच्छे और तस्सी फोड़ उन्जन तन मतलब बिखड़े ते फर्स्ट क्लास तन फोड़ में तन बनते तस्स जैसे तो लिहाज सही कौन लोड़े की रुकी हम गाला करो पूर ध्यान लोड़े रखा रो और पूरी कोशिश लोड़े की रही सही कि जब कोई इसी खाल खा रहे तड़िया सही फोड़ो लोड़ लोड़े
1: जी जी यार भाई इसी एक्सपर्ट ने से गल करा रो भी है मकसद बहुत है कि भाई यानी इतनी गल जो ही और जाना हो रहे भी सीखने वाले तन के हौसला अफजाई वेगा चे
0: बिल्कुल
1: ता गल इसी अज जरी ऐसे पुट थी कि लेवेंडर कल्टीवेशन है जाए ता सेरो जाए लांड रो तरीको भी ऐसे एक्सपर्ट ने कमे लिगाते या सीरीज है हर कोई एक्टिविटी है लाने के रहता सेरे फूड तोड़ने तक तभी ऐसे नन कर जानकारी में लेगा जे तो जो रहा मतलब कि भाई शे जितने भी बेरोजगार साथी न जन का अगर ज़मीन है कि जो इसे बदला है ऐसेरे अनुकूल ज़मीन है कि जो कि टेम्परेचर ही ऐसेरे अनुकूल रहते ज़्यादा टेम्परेचर भी ऐसा लोड़े ऐसे ले टेम्परेचर पंजीन के अगर उन्डो हुआ है तो बड़ अच्छो है
0: बिल्कुल
1: तो आसन का ये रिजी री डुगे डुगे नाले भी आना या कंडीला को आसन का जरिए लेवेंडर की फसल तैयार हो जाए तो मेहनत असी घट्ट और फायदो ज़्यादा है इक्की
0: बिल्कुल
1: बार लाने से मेहनत है फिर असी एयरगेश के तुरा नू अगर पैने की जरूरत है तो पानी देनू है या साले में दुई बार जाए तो खाद भी अस दे सकते
0: जी
1: गोबर वगैरह छड़ी सकते हम ते आसे पासे जाए तो घास वास शुरू कर तुरा नू ताकि शो पौधो जाए तो छेल फैले तो सिरो
0: बिल्कुल
1: फैला हुआ अच्छो बोए तो सिरो फूडू अच्छा बोन ता बिल्कुल ही ओदी जगह ही बिना लागे तो थोड़ी देर धूप भी जरूरी है जड़ी है दोपहर से लाके भी लागे था तो सेले भी जरूरी आ जन से इसे बढ़ाए मैं उन्हें शीजन बखन बोते था हिमे से भी ऐसा कोई फर्क ना पे ता चीज़ों भी ऐसा कोई डर नहीं लेकिन ऐसा तैपलू जरूर डर लगते जैसे धूप भी बोए और धूप भी ज़्यादा थोड़ी जो ठंड भी रहा है
0: जी
1: ता ऐसे एतम की केले इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग अपनों पूर्वा का कुडार है जन बंद रख रू अस्पाती और साल बसाल ही जन तेना फसल काटते रहा तन ता सिर्फ भाई परेशानी है ये कि असन सेरी जाए तो कीमत सेरी बद लोड़ है सेरो असन जेरी असर फसल तैयार हुई तो तय असन बिकती ने लोड़ ली हो रही और भाई जल्दी के जल्दी मिल रहा लोड़ है
0: जी
1: हर काम जन तो फायदा ले क्योंगा तो अगर तरह नुकसान है बहुत तो सिर कोई फायदा नहीं
0: जी
1: ते संगीत जी इंतजार बहुत ही छे किसान लान गां तो लिए नसीहत करो ते अज नसीहत एंसर असी है कि भाई अपनी असी अज गलबात ही में भी जो कि अपनी फसल में असी ज्यादा कर ज्यादा गोबरों इस्तेमाल करनो खाद का घट इस्तेमाल करे क्योंकि अजकल हर फसल अस ले रहा और गोबर छड़ रो गोबर छाडा ताकि इस चीज़ उडारी सी ते ठीक रहे
0: जी
1: ते तुझ हाथे में जाए तो मौसम मेरी जानकारी ते काला कैंसर सी है मौसम
0: अरे मुकेश जी मेरे मौसम जानकारी जरूरी है ते असारे मुताबक अच्छे घर अच्छे से टेम्परेचर है 3 डिग्री है ते घाटे घर घाटे से 11 डिग्री
1: जी
0: आशंका है ते साथ ही वैसा ते शायद बिल्ला रह रहा है और हल्की फुल्की से बूंदा वाली तो वही
1: जी जी
0: सच्चे
1: बिल्कुल ऐसे साथ ही शुक सानवानी प्रोग्राम है ते वक्त से आसन इजाजत दे हर रोज़ ज्यादा टाइमर हर कोई पाबंद लोड़े कोई
0: बिल्कुल
1: भी कम है तेन टाइम है बोते
0: जी
1: गलत अस बड़ी लम्बी चौड़ी करनी चाहती बड़ी सारी गल अस अपने किसान लान से करनी चाहते थी है। लेकिन वक्त अगर इजाजत न दे तो ऐसे से साथी अस अपने सुनने वाले के मगतम इजाजत
0: जय
1: जय
0: हिंद।

अभी आप किसानवाणी प्रोग्राम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब है FM 101 MHz पर। समय आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में और उसके फौरन बाद अंग्रेज़ी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक
1: रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज 8:09 और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:15 पर डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। रिले का जरा सा इंतजार कीजिए।

0: तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं कुणाल श्रीवत्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें 19वें रोजगार मेले च 50,000 शा मते नियुक्ति पत्र बंडे। जम्मू च आयोजित प्रोग्राम च जम्मू कश्मीर दे 220 नौजवानें गी नियुक्ति पत्र दिते गे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें शोपियां च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा च हिस्सा लाया। नशीले पदार्थें दे नैटवर्क खिलाफ सख्त कार्रवाई लई कीता आगाह। रजौरी दे डोरीमल जंगली इलाके च सुरक्षाबलें ते आतंकवादियों बश्कार टाकरा भखी पिया जेड़ा अजें जारी है। जनजातीय मामले मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर च जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 तहत लोकें दी बड़ी मती हिस्सेदारी यकीनी कीती है। उत्सव दौरान 718 शा मते कैंप लोआए गए ते 50,000 शा मते लाभकारियों तक पुज बनाई गई। ते मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर च 5 मई तक कुतै कुतै बरखा दी फुहार पौने ते तेज ब्हाई चलने दी पेशनगोई कीती है। हुन खबरें दी तफसील कन्नै प्रोमिला जम्वाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं रोजगार मेले दे 19वें गेड़ तैहत पूरे मुल्खै दे नौजवानें गी 50,000 नियुक्ति पत्र बंडे। जम्मू च उत्तरी रेल जम्मू डिवीजन आसेआ इस प्रोग्राम दा आयोजन कन्वेंशन केंद्र च कीता गेदा हा, जित्थें जम्मू कश्मीर दे 220 मेदवारें गी नियुक्ति पत्र बंडे गे। सरकार दी रोजगार मुहिम दे इक हिस्से दे तौर चलाई गेदी इस भर्थी मुहिम दा मकसद नौकरियां पैदा करना ते आत्मनिर्भर भारत दी सोच गी अग्गे बधाना है। बक्ख बक्ख विभागें ते मंत्रालयें जियां रेलवे, गृह मामले, सेहत ते परिवार कल्याण ते उच्च शिक्षा ते होरनें च नियुक्तियां कीतियां गईआं। मौजूद किट्ठ गी संबोधित करदे होई डिवीजन रेल प्रबंधक विवेक कुमार होरें आखिआ,
2: आई कॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। आप सभी जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको एनरोल करें और इसमें अपनी प्लेटफॉर्म के जरिए खुद को अपग्रेड करें और प्रशिक्षित करते रहें। इसी सोच के तहत युवाओं को समय समय पर देशभर के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ लाखों नियुक्ति पत्र सौंपे जाते हैं। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को त्वरित एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करना है। यह हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयत्नों के कारण हम लगातार प्रत्येक वर्ष इसी तरह से हजारों युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रदान करते हैं।
1: आकाशवाणी कन्नै गल करदे होई नमें भर्ती कीते गेदे एक नौजवान ने आख्या,
3: मेरा नाम रजत कुमार है, मैं बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड से हूँ और मेरे को यहाँ पर जम्मू में अभी करंट पोस्टिंग मिली है एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस एमई। अभी हमारी ये पिछले कई साल की मेहनत थी और जिसमें हमें अभी एसएससी के थ्रू हमारा एग्जाम हुआ सीजीएल, उसके बाद में अभी के जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हुई है।
4: मेरा नाम बादल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 54,000 से ज्यादा बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मुझे भी उस नियुक्ति पत्र में मौका मिला है अपना नियुक्ति पत्र लेने का। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है। मोदी जी का इस
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज्ज शोपियां च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पर यात्रा च हिस्सा लैता, जित्थें मौजूद समाज दे बक्ख बक्ख वर्गें दे लोकें जम्मू कश्मीर दी हर नुक्करै थमां नशीली दवाइयें दी तस्करी करदे आतंकवादियें गी खत्म करने दा धैइया कीता। मौजूद किट्ठ गी संबोधित करदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ जे नशीली दवाइयें खिलाफ 43 दिन पैहले जम्मू च जेड़ा इक आंदोलन शुरू कीता गेआ हा, ओह हुन इक तगड़ा जन आंदोलन बनी गेदा ऐ ते जेड़ा इस गल्लै दी तस्दीक करदा ऐ जे नमां युग शुरू होआ करदा ऐ। उनें आखेआ नशीले पदार्थ नौजवानें गी तरक्की थमां दूर करा'रदे न। उनें आखेआ आतंकी ग्रुप नशीले पदार्थ बेचियै जेड़ा पैसा कमांदे न, ओह्दे नै हथियार खरीददे न ते फ्ही उनें हथियारें कन्नै आम

0: बच्चा होता है। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अनेक माँ बाप इस खौफ के साए में जी रहे थे, हमें इस खौफ को पूरी तरह समाप्त कर देना है।
1: जिला रजौरी दे जंगल आले इलाके डोरीमल च अज्ज सुरक्षाबलें ते आतंकवादियें बश्कार इक टाकरा पखी पिया। सेना दी वाइट नाइट कोर आसेया जारी इक सोशल मीडिया पोस्ट मुजब अज्ज बड्डलै कोई 11:30 बजे गंभीर मुगलां इलाके च जम्मू कश्मीर पुलिस ते सीआरपीएफ कन्नै इक संयुक्त खुफिया अभियान दौरान आतंकवादियें कन्नै संपर्क स्थापित होई गेआ। अधिकारियें दस्सेआ जे सुरक्षाकर्मियें गोलीबारी दा फौरन बनकदा परता दित्ता। इलाके दी घेराबंदी करी लैती गेदी ऐ ते अभियान अजें चला'रदा ऐ। जनजातीय मामले मंत्री जावेद अहमद राणा होरें अज्ज इक उच्ची सतह दी मीटिंग दी अध्यक्षता कीती ते जम्मू कश्मीर च पट्टीदार जनजातियें ते दुए पारंपरिक रूपें नै जंगलें च बसने आलें दे जंगल पर उंदे अधिकारें गी पंछानने आले 2006 बरे आले कानून दी अमलावरी दा जायजा लिया। मीटिंग दौरान मंत्री होरें जंगलें पर इख्तियार आले कानून FRA तैहत कीते गेदे दावें दी स्थिति दा व्यापक जायजा लैता। उनें बक्ख कमेटियें दी कारकरदगी ते जनजातीय समुदायें दे अधिकारें दे संरक्षण लेई कीते जा'रदे ईलें बारे भी पुछ पड़ताल कीती। मीटिंग दौरान मंत्री होरें निर्देश दित्ते जे सब्भनें बकाया पेदे दावें गी पैह्ल दी बनाह पर दिक्खेआ जाग ते कानून दे प्रावधानें तैहत सख्ती नै कारवाई कीती जाग।
2: एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे ओ।
1: एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना'रदे ओ। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै कुणाल श्रीवत्स।
3: जनजातीय मामलें सरबंधी मंत्रालय ने आखेआ जे जम्मू कश्मीर जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 दे तैहत लोकें दी हिस्सेदारी गी सक्रिय रूप कन्नै बढ़ावा दित्ता जा'रदा ऐ। मंत्रालय मुजब समूलचे केंद्र शासित प्रदेश च 718 शा मते कैंप लाए गे न, जिंदे च 50,274 शा मते लोक शामल होए न ते 3,000 शा मते कल्याणकारी सेवाएं ते अधिकारें दी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मंत्रालय ने आखेआ जे इस अभियान दा मकसद सरकार दी कल्याणकारी पहलकदमियें गी कारवाईयें ते लोक केंद्रित सेवा उपलब्ध कराइए इनेंगी जनजातीय समुदायें तकर पुजाना है। मंत्रालय ने आखेआ जे सबसे दूर सबसे पहले दे नारे विकास गी घर घर पुजाने दे जतन जारी न। पेट्रोल ते डीजल दे भाएं च अज्ज 91 पैसे फी लीटर तगर दा वाधा कीता गया है। एह वाधा 10 दिनें शा भी घट समय च 3 बारी कीता गया है। इस महीने की 15 तरीक गी ईंधन की कीमतें च 3 रुपये फी लीटर दे वाधे दे बाद यह 3 तरमीम है ते एह्दे मगरा 19 तरीक गी 90 पैसे दा वाधा कीता गया हा। हाल दे दिनें च कुल मलाइए कीमतें च तकरीबन 5 रुपये फी लीटर दा वाधा होआ है। ईरान संघर्ष ते होरमुस जल डमरू मध्य च रुकावटें दे मगरा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल दे मुल्लें च तेज उछाल दे चलदे एह बढ़ोतरी कीती गई है। मौसम विभाग ने भविक्खवाणी कीती है जे आने आले किश दिनें च जम्मू कश्मीर च मौसम बदलदार होने की उम्मीद है। अजे थमां लेइयै 5 मई तक दपैह्री मगरा किश थाहरें पर तेज ब्हाएं दे कन्नो कन्नी बरखा पौने दे आसार न। 26 थमां 27 मई तगर जम्मू खित्ते च केईं थाहरें पर मौसम आम तौरा पर खुश्क रौह्ने दी मेद ऐ ते गर्मी दी लहर भी बनी दी रोग। 28 ते 29 मई गी केईं थाहरें पर 1 या 2 बारी बरखा जां तेज ब्हाऊ कन्नै अंधी झक्खड़ दी संभावना ऐ। 30 मई थमां 2 जून तगर दपैह्री मगरा किश थाहरें पर बरखा जां गरज चमक होई सकदी ऐ। मौसम विभाग दे निदेशक मुख्तार अहमद होरें होर मती जानकारी दिंदे होई आखेआ
4: 26 से लेकर 28 इवनिंग तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। 28-29 के बीच में भी एक स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर जो है देखा जा सका है। ओवरऑल जो फिलहाल कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है टिल एंडिंग मई तक, और 26 ऑनवर्ड्स मौसम जो है ड्राई है तो एक बार फिर टेम्परेचर में भी जो है इजाफा होगा और हॉट एंड ड्राई वेदर जनरली रहेगा यहाँ वैली के अंदर, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स हीट वेव लाइक कंडीशन जो एक बार फिर देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है तो मिक्स टाइप ऑफ वेदर रहने के चांस है टिल एंडिंग में।
3: नशा मुक्त भारत अभियान तहत जिला स्तर दी इंटर जोनल टूर्नामेंट अज उधमपुर दे सुभाष स्टेडियम च शुरू हुई। डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा होरें इस प्रतियोगिता दा उद्घाटन कीता ते नौजवानें गी नशा मुक्त समाज बनाने लेई खेडें च शामल होने आस्ते प्रोत्साहित कीता। खडारियें ते अधिकारियें आसेया नशा मुक्ति दी संगंध भी चुकी गई। 11 जोनें दे

0: 14 ब'रे शा हेठली ते 17 ब'रे शा हेठली उमरी दे जागतें ते कुड़ियें दी टीमां इस प्रतियोगिता च हिस्सा लैंदियां न। एह् टूर्नामेंट 4 जून तक्कर जारी रौह्ग। एह्दे च कौड्डी, वालीबाल, बैडमिंटन, खो खो, योग, शतरंज ते होर केई खेडां शामल न। इस मौके पर बोलदे होई उधमपुर दे DC मिंगा शेरपा होरें आखेआ,
1: इस साल एक एडिशनल बात यह है कि जो नशा मुक्त जेएनके अभियान है जो ऑनरेबल एलजी साहब ने लॉन्च किया था, उसके अंतर्गत इन्हीं इवेंट्स को हमने दोगुना किया है।
2: पानी भी आप जब लेंगे, वाइल्ड वाटर लें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लें, और जितने भी सारे आपके वाटर बॉडीज हैं या सोर्सेस हैं उनको साफ रखें, क्लोरिनेशन करें, और बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, DD डिपार्टमेंट, BDO साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने जितनी बॉडीज है प्लीज साफ करवाएं। मैं PHE डिपार्टमेंट से गौर करूंगा कि जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनको साफ करके क्लोरिनेशन करें वाटर की, और दूसरे भी जितने म्युनिसिपैलिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं और बाकी भी पब्लिक को।
1: इस साल एक एडिशनल बात यह है कि जो नशा मुक्त जेएनके अभियान है जो ऑनरेबल
0: DC ਤੁਹਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ,
3: मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल का टूर्नामेंट खेलने आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी, और हमें जैसे स्पोर्ट्स में हमें ऐसा मन लगता है और पढ़ाई में भी हमारा लगता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें।
4: आखर च खास खास खबरां इक बारी परतियै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें 19वें रोजगार मेले च 50,000 शा मते नियुक्ति पत्र बंडे। जम्मू च आयोजित प्रोग्राम च जम्मू कश्मीर दे 200 बीए नौजवानें गी नियुक्ति पत्र दित्ते गे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें शोपियां च नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा च हिस्सा लिया, नशीले पदार्थें दे नेटवर्क खिलाफ सख्त कार्रवाई लई कीता आगाह। रजौरी दे डोरीमल जंगली इलाके च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियें बश्कार टाकरा भखी पिया जेड़ा अजें जारी है। जनजातीय मामले मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर च जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 तैहत लोकें दी बड़ी मती हिस्सेदारी यकीनी कीती है। उत्सव दौरान 718 शा मते कैंप लोआए गए ते 50,000 शा मते लाभकारियें तक्कर पुज बनाए गए। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर च 5 मई तक्कर कुतै कुतै बरखा दी फुहार पौने ते तेज ब्हाई चलने दी पेशनगोई कीती है। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ। हुन सुनो इक समीक्षा।
5: आउन करने आ गल गुआंढियें दी। जिसले भी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र च बयानबाजी दा सहारा लैंदा ऐ तां उहदा जो किश होना तय हुंदा ऐ उऐ इस बारी भी हुआ। इस वैश्विक मंच पर कूटनीतिक टकराव ने भारत ते पाकिस्तान बश्कार तनोतनी की होर बधाई दित्ता है। कुसै भी मुल्क की आम प्रतिक्रिया आला लेखा गै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसल दे सत्रें दौरान भारत ने जम्मू कश्मीर दे मुद्दे की पुट्टने दे पाकिस्तान दे भैड़े मनसूबें गी पूरी चाली तबाह करिए रखी दिता ते इन्हें टिप्पणियों गी बंड पुआने वाली सियासी बयानबाजी करार दिता। ते ऐसा करना बिल्कुल सही भी है हा, कि जे पाकिस्तान दियां ए टिप्पणियां कोरी बयानबाजी थमां वध होर किश भी नहीं है हियां, जिनेंगी झूठ की बुनियाद पर बड़ी चलाकी कन्ने गड़िया गेदा हा। हालांकि पिछले किश बरें च दुनिया भरै दे नेताएं गी पाकिस्तान दी इस नौटंकी दे पिछे दी सच्चाई दा पता लग्गी गेदा ऐ ते ओह हुण पाकिस्तान दियें गल्लें गी मती संजीदगी कन्नै नेईं लैंदे। असल च भारत दी प्रतिक्रिया गी छड़ा पाकिस्तान दे झूठ गी सामने आनने दा जरिया गै नेईं मन्नेया जंदा, सगुआं इसगी जमीनी हकीकत दे तौर पर भी दिक्खिया जंदा है। संयुक्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश होरें पाकिस्तान दे तर्कें गी पखंडी करार दिंदे होई त्रिक्खा जवाब दिता। उनें पाकिस्तान दे मनुक्खी अधिकारें आले रिकॉर्ड की सख्त निंदा कीती ते उदे पर मसूम लोकें दे कतलेआम जनेही घटनाएं दे दागदार इतिहास गी अग्गे बधाने का दोष लाया। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की पोल खोलदे होई भारत ने इस गल्लै पर जोर दिता जे पाकिस्तान अपने सेना प्रमुख गी ते ता उम्र कानूनी छूट प्रदान करदा है पर विरोधी नेताएं गी जेल च डक्की दिंदा है। मेशाला लेखा भारत ने इस बारी भी इस गल्लै गी पूरी तगड़ियाई दे कन्नै दुनिया दे सामने रखी दिता जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख भारत दे अंतरुट अंग न। भारत ने अपने जवाब च अक्सर पाकिस्तान गी इब्बी आखिया है जे ओह ओकड़े इलाकें गी खाली करी दिया है जिंदे पर उन्हें गैर कानूनी कब्जा करिए रखे दा है। भारत ने इस मंच दा इस्तेमाल पाकिस्तान की सख्त निंदा करने लई ते कन्ने पाकिस्तानी फौज आसिया बन्ने पार अफगान नागरिकें दियें हत्याएं गी उजागर करने लई भी कीता। ना छड़ा भारत सगुआं पूरी दुनिया इसगी पखंड मनदी है जे कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून की वकालत भी करै ते कन्ने गै बेदोसे नागरिकें गी निशाना भी बना। सच ते एह है जे बेदोसे लोकें दे कतलेआम दा इतिहास रखने आले कुसै भी राष्ट्र दा कश्मीर उपर उपदेश देना अपने आप च एक मखौल है। तथ यह है जे संयुक्त राष्ट्र के मंच परा भारत ने जो किश आखिया वह छड़ा जवाब देने आस्ते दिता गया परता गै नहीं है हा, वह छड़ा एक खंडन गै नहीं है हा, सगुआ यह मकसद पूरी दुनिया की इब्बी दसना हा जे पाकिस्तान का गैर मनुखी रौं कई दहाकें थमां अपनी अंदरूनी नाकामियों की अपने देश के बन्ने के अंदर ते बाहर भी हिंसा दे राएं एक बारला मुद्दा बनाने दे उदे पैड़े जतने की दर्शांदा है। इस जिम्मेदार देशों का काम है जे ओ इन्हें सबने गल्लें की समझन। ये छड़ी भारत आसिया उकड़े मोर्चे पर अपनी स्थिति का बचा करने की गल है जिथे पाकिस्तान अक्सर जहर उगलता रहा है। दुनिया के नेताएं की यह समझ ना होग जे पाकिस्तान इन्हें सबने मोर्चे पर किस चाली का दुष्प्रचार फैला करता है। ये आखने की लोड़ नहीं है जे भारत बन्ने पार आले आतंकवाद करी पैदा होने आले लगातार खतरे की लेइए मता चिंतित है, पर जेकर पाकिस्तान इन्हें मुद्दे पर सच्चाई थमां मूंह मोड़दा है या भी जानी बुझिए चुप रौंदा है तां ओ अपना भला करने दे बजाए अपना गै मता नुकसान करारदा है। गल गुआंढियों दी च अज बस इन्ना गै, कल कुसी होर विशे पर भी अपने गुआंढियों दी गल करगे। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर, समय 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत। आगाज में समाप्त कीजिए आज़ाद देश के गुलाम फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, बोल समीर के हैं, संगीत से हमारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए आप सुनते हैं नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है लाबेला ने और

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन। 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें व तबसरा, और रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: Winnegan.
1: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, 50,000 से ज्यादा नौजवानों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरूर नामे तकसीम किए। वजीर जिरात बागबानी जावेद अहमद डार का ऐलान, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जल्द लागू की जाएगी। उर्स शाह हमदान के मौके पर तकारीब का एहतमाम। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम फिर एक बार शोपियां पहुंची। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 9018074333।
7: 9018074333।
8: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी हिच कमी द्रामस।
9: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
8: मगर यह है आज सठा द्रो?
9: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइल है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: अरे माँ देखो एक्सीडेंट,
13: रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
14: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
13: नहीं माँ, वैसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
14: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
13: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
14: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
13: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
14: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
13: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
14: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
13: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरीरनामे तकसीम किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि भारत के नौजवान 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में सरमायाकारी से रोजगार के नए मौक पैदा हो रहे हैं। ये रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकाम पर मुनाकिद हुआ, जबकि हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 12 लाख तकरीरनामे तकसीम किए जा चुके हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का खैर मकदम करते हुए कहा कि भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुसलसल मजबूत हो रही है। वजीर आजम मौसूफ ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के बीच दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आलमी अमन सलामती से मुतल्लिक अहम उमूरात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका जमहूरी अकदार, इकतसादी तआवुन, दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और आलमी इस्तेहकाम के मुश्तरक अहदाफ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बकौल दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल में बाहमी इश्तराक और करीबी राबिता निहायत जरूरी है। सेमिनार जिला बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार ने शिमाली कश्मीर के कई ऐसे इलाका जात का दौरा किया जो हालिया जालाबारी से नुकसान ज्यादा हुए। वजीरे के रफियाबाद के मुतादिद देहात में परसों शाम और कल दिन में भारी जालाबारी के नतीजे में मेवे बागात और धान की पनीरी के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। आज के दौरे के दौरान वजीर जिला बागबानी ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर सरकार अगले 1.5-2 माह के अंदर ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगी। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किए जाने का मुतालबा पिछले कई बरस से मुसलसल किया जाता रहा है ताकि खराब मौसमी सूरत हाल के नतीजे में किसानों को होने वाले नुकसान की माकूल भरपाई हो सके। एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम।
7: क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए इस साल की बजट में रुकूमत मखसूस की गई है। इन ख्याल का इजहार आज वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने हालिया दिनों तालाबारी से मुतासरा रफियाबाद के कुछ देहात के दौरे के दौरान किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है और जून के महीने में इसकी ओपनिंग है और 1-1.5 महीने में ये मरहला पूरा होगा और यहाँ पर बाजाबता तौर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। वजीर मौसूफ ने कहा इसके अलावा हुकूमत मरकजी सरकार के साथ मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम को यहाँ पर लागू करने के लिए मरकजी सरकार से राबते में है, जिससे कि हमारे ग्रोवर्स को मेवे की अच्छी कीमत वसूल होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई है कि वो जमीनी सतह पर जाकर हालिया तालाबारी से हुए नुकसान का जायजा लें ताकि जमींदारों को बर वक्त रिलीफ दिया जा सके।
15: कहना कि पिछले कई दिनों से जो ये जो मौसमी हालात बदल रहे हैं उसकी जद में जो है इस वक्त पूरा कश्मीर है और जम्मू के कुछ एरियाज भी है जहां रेगुलरली बारिशें हो रही है और बारिशों के साथ साथ जो है जालाबारी भी होती है और इससे काफी जो है हमारे फसल को डैमेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और चूंकि हमारे पास अभी प्रोविजन जो होते हैं वो SDRF में होते हैं जिसके तहत लोगों को हम असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, रिलीफ देते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो कल से ही कोशिश करी है कि हर जगह जाने की और असेसमेंट देने की और जब वो फाइनल असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद इनको रिलीफ दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम लोग पाई तकमील तक पहुंचाएं। जैसे मैंने कहा कि 1 जून की उसकी बिडिंग की जो है ओपनिंग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो सारा प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम का और उसके बाद वो यहाँ लागू की जाएगी। उसके लिए हमने बजटरी प्रोविजन रखे हैं इस साल के लिए, जो प्रीमियम हमको भरना पड़ता है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना भरेगा, हम स्टेट भरेंगे और फिर फार्मर्स का भी शेयर कुछ रहेगा जो अगले 1-1.5 महीने में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जो यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी।
7: यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कल रफियाबाद के निसब दर्जन से जायद देहात में शदीद तालाबारी हुई जिससे मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुँचा, जिनमें हिप डांगरपोरा, लासर, चतलोरा, हदीपोरा, छिजहामा, माचेपोरा, सरीपारा, बुडन और दीगर इलाके शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते से जिले बारामूला में टंगमर्ग, पट्टन, कैरी, संग्रामा, कंडी बारामूला, कस्बे बारामूला,

0: सस्पेंड किए गए हैं। 6 रजिस्ट्रों उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ऐसे तमाम आंकड़े दर्शा रहे हैं कि ड्रग के सप्लाई चेन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर हम सब काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के स्पॉन्टेनियस तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं।
1: उस मौके पर शोपियां और जनपद के मेंबरान असेंबली, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, ADGP सियाली, IG कश्मीर, DIG बराई जनूबी कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर शोपियान और SSP शोपियान के अलावा सिविल व पुलिस निजामे के आला तरीन अफसरान भी मौजूद थे। पूरे जिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे।
2: नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत शोपियां में तकरीब का एहतमाम, जिसकी क्यादत, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। फयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा, हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी दूसरी किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
5: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज बुलंद पाया वली सूफी बुजुर्ग और कश्मीर में इस्लाम के बानी शाह हमदान हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। कश्मीर के आवाम को मुशर्रफ बा इस्लाम करने के लिए जो खिदमात शाह हमदान ने अंजाम दी हैं वो हर एतबार से काबिल कद्र और गैरमामूली अहमियत के हामिल हैं। इसी के साथ साथ कश्मीर में मुतअद्दिद फनून को मुतारिफ कराने का सहरा भी शाह हमदान के सर है। आज उर्स शाह हमदान के मौके पर वादी में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर की तारीख खानकाह मौला में मुनक्किद हुई, जहां कल नमाज मगरिब के बाद से ही जायरीन की आमद शुरू हुई। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
7: बुलंद पाया वली कामिल मोहसिन कश्मीर बानी इस्लाम फिल कश्मीर हजरत अमीर कबीर मियर सैयद अली हमदानी अलमारूफ हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक वादी कश्मीर में आज नहायत अकीदत एहतराम और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर वादी भर की मुतअद्दिद खानकाहों, मसाजिद, दरगाहों और दीनी मराकज में खुसूसी दुआ इज्तिमा, शब खानी, दुरूद अजगार और महफिल मौलूद का अहतमाम किया गया, जिनमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। मरकजी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां नमाज इशा के बाद शब खानी का आगाज हुआ। नमाज मगरिब से ही खानकाह मौला में जायरीन की बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई थी और रात भर रूहानी माहौल में तिलावत कुरान पाक, दुरूद अजगार, नात खानी और इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला जारी रहा। जबकि आज सुबह नमाज फजर और जुहर की नमाजों में भी हजारों फरजंदा ने तौहीद व मुहिब्बान अवलिया ने शिरकत की। इस दौरान उलमाए किराम ने हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह

0: कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकज की तरफ से साल 2021 से अब तक 100 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए गए हैं, जिनसे नौजवान खिलाड़ी मुस्तफीद होकर कौमी और बैनुल अक्वामी सतह के खेल मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दरियासना बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: मैंने पहले भी नेशनल में गोल्ड मेडल लाया, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था और अभी मैंने इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और ये जहाँ पे मैंने एशियन चैंपियनशिप खेली थी ये उज्बेकिस्तान में हुई थी, ये मेरी इधर टोटल 4 फाइटें हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खेलूँ इंडिया सेंटर से निकल के अपने जम्मू कश्मीर और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म लाए और हमारे जैसे बच्चे खेलो इंडिया सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
0: जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
2: सामईन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वादी कश्मीर की फितरी खूबसूरती इन दिनों जो बन पर है, हर सू नजर को तरावत बख्शने वाला सब्जा बिछा हुआ है, तरह तरह के फूल हर सू खिले हुए हैं। ऐसे में सियाहती सरगर्मियां बतदरीज बढ़ रही है। पिछले साल बायसरन पहलगाम में पेश आए दिलदोज वाके से सियाहती शोबे को जो जबरदस्त धचका लगा था अब फिर से उभर रहा है। इन दिनों वादी आने वाले सयाहों की तादाद में बेहतरी दिखाई दे रही है और तवक्कु की जाती है कि इस साल बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी आएंगे। इस ताल्लुक से कश्मीर के मुल्क के रेल निजाम से पूरी तरह जुड़ जाने से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सियाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार समेत तमाम शराकत दार अपनी तरफ से कोशिशों में लगे हुए हैं और ये कोशिशें किसी कदर बार आवर साबित हो रही हैं। यहाँ आने वाले सयाह हस्ब रिवायत यहाँ की फितरी खूबसूरती और मेहमान नवाजी से खासे महजूज और मुतासिर हो रहे हैं। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत का कलीदी शोबा है। इस शोबे से बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों को रोजगार हासिल होता है और यहाँ इस शोबे में वसी इम्कानात मौजूद हैं। ताहम इस सिलसिले में एक तवील मुद्दती जामिया हिकमत अमली नागुजीर है। इस तरह की हिकमत अमली के 3 बड़े पहलू है। पहला पहलू अमन व सलामती के माहौल को यकीनी बनाने का है क्योंकि सियाहत बद अमनी में फरोग नहीं पा सकती। अवाम सिविल सोसाइटी और सरकारी इदारों को अमन के फजा कायम रखने और मजीद उस्तवार करने के लिए चौकन्ना रहकर मुत्तहिदा तौर पर कोशिशें करना होंगी। दूसरा पहलू वादी की बेपनाह फितरी खूबसूरती को बरकरार रखने का है। हालिया दहाइयों में इस ताल्लुक से सभी मुतलकीन को कोताहियां और अदम तवज्जुही सामने आती रही है। तीसरा पहलू भाईचारे और मेहमान नवाजी की यहाँ की रिवायत को बरकरार रखने का है। इस ताल्लुक से सरकार से ज्यादा बड़ा रोल अवाम और सर्विस प्रोवाइडर्स का है। जाहिर बात है कि सियाहती शोबे की देर पर तरक्की के लिए इन तीनों पहलुओं का इहाता करने वाली मरबूत हिकमत अमली नागुजीर है। उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की हिकमत अमली अपना कर जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर आने वाले बरसों में मजीद फरोग पाएगा और यहाँ की मईशत व माशरत में नुमाया रोल अदा करेगा। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8:00 اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 PM شام نشر ہوتا ہے۔

जी दोस्तों, ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है बनियारी सोनावारी से। आप हैं मोहम्मद अशरफ डार, मंसूर अहमद डार, जान मोहम्मद डार, गुलाम अहमद मटानी और फारूक अहमद चौपान, सुरफा कंगन से लतीफ़ अहमद रैना, खालिदा जी, अफरोज़ा जी, फयाज अहमद, साहिल तनवीर और अब्दुरऊफ शेख। बनियारी सोनावारी से मोहम्मद अशरफ डार, मंजूर अहमद डार, जान मोहम्मद डार, गुलाम अहमद मटानी और फारूक अहमद चौपान। आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है अदालत। इसी नगमे को सुनने के लिए आप सब दोस्तों ने मेल भेजे हैं। आप हैं मोहल्ला चंदूर बिस्वासी नारायण भाव, विठल राव, ललिता रानी, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्राउनी, उषा, सुवर्णा, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, ओम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जामदारे, स्वराज, स्वारीत, हिंगोली से शाजी बोड़के और सदाशिव, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने मेल भेजा है। गुरदर्शन लाल का मेल हमें मौसूल हुआ है कैरून से। आपके साथ हैं सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद, बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी और इसर राज सूर्यवंशी। आपने मेल भेजा है नया पारा बिरई से। जमशेदपुर झारखंड से कुमारी प्राची, साधना ठाकुर, राजकुमार ठाकुर और पप्पू ठाकुर, तेलंगाना बुंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान, फरहान, सुमायरा और अजीम गुड़िया, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, रमा और आरएस पुरी। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अदालत से नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। जी दोस्तों, ये मेल हमें मौसूल हुआ है श्री गंगानगर राजस्थान से। आप हैं मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कृति और भूमिका। आपने किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में नगमा सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है शालीमार। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं सल्लर, पहलगाम से पीरजादा, मेराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन और कैसरुद्दीन, नागजुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा, एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और सियावल हक डावर, नसीमुल इस्लाम गनोरी ने मेल भेजा है बिहार कॉलोनी लूनी से। आपके साथ हैं प्रकाश वीर राजपूत और आपके बहुत सारे दोस्त, डोंडी लोहारा बालूद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप पिल्लई से अनुश्री प्रदीप, रिंकी पिंकी प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से ये मेल हमें मौसूल हुआ है लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार मिश्रा की जानिब से। वलीउल्लाह अंसारी ने मेल भेजा है पुराना तालाब डुमराव से। आपके साथ हैं असमानाज अंसारी और सोनम, सारिमपुर बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छटिया पोखर डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने मेल भेजा है, और छत्तीसगढ़ पथरिया बरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वानिया ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म शालीमार से नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

दोस्तों अब पेश है महेंद्र कपूर की आवाज में नगमा, फिल्म का नाम है उपकार और इस गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, राजकोट से अजीता पॉल, प्रमीला, प्रियांशी शर्मा, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही और मेहराज जहां, राहुल नगर अमरावती से पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है सिद्धार्थ गोंडाने की जानिब से, आपके साथ हैं अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश, प्रतिभा और पद्माकर गोंडाने। बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये मेल हमें मौसूल हुआ है प्रेम सिंह वड़वाल की जानिब से, आपके साथ हैं सुखवीर वड़वाल, रानू, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगोली, निशान अनमोल, चटकू और मटकू और मजनू का टीला दिल्ली से ये मेल हमें मौसूल हुआ है कमल बलूजा और मधु बलूजा की जानिब से, सुनिए अपनी पसंद।

ये आकाशवाणी भदरवाह है, FM 101 MHz पर। श्रोताओं, 8:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं सराजी मौसिकी। आज के फनकार हैं नारायण कटोच।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की

0: 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम

0: टेक्नोलॉजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center

0: रही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद-ए-अम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाकई इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशोरे के लिए विकसित भारत जीरामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाया किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौरखोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित

0: दिन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
1: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 200 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। श्रोताओं 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों पर आधारित प्रोग्राम गाने पुराने। आगाज में समाप्त कीजिए नसीब फिल्म का गीत कमलेश अवस्थी अनवर सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के हैं। संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

समयना, अभी आप समाप्त कर रहे थे पुरानी फिल्मों पर आधारित प्रोग्राम गाने पुराने। ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। श्रोताओं, रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल की मजलिस में सुबह 7:51 पर आपकी खिदमत में पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए अनुमति चाहते, शुभरात्रि, जय हिंद।